सुप्रभात अंबाला, आप सभी श्रोताओं का स्वागत और अभिनंदन है आज के प्रसारण में। आज है 16 जुलाई 2026 वीरवार, अषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वितीया 2083 विक्रम संवत। अंबाला में सूर्योदय हुआ है 5:32 पर और सूर्यास्त होगा शाम 7:26 पर। आज जगन्नाथ रथ यात्रा भी मनाई जा रही है।

महापुरुषों के वचन श्रवण करके जिन्होंने उस तरफ अपना मुख कर लिया, उन्हीं के हिस्से लोक परलोक का संवरना आ गया। वरना तो जिसको सबसे अच्छा युग मानते हैं, उसी सतयुग में भक्त प्रह्लाद जैसे को उसी के पिता ने होलिका का सहारा लेकर जलाने का प्रयास किया, और त्रेता जैसे युग में भी ककई का इस्तेमाल करके मंथरा चाल चलती रही।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता अंबाला का अपना रेडियो।

तो बोजान एफएम नमत आशारिया सिफर रेडियो विदस्ता हम सफर जिंदगी हुन बोजान रूजिव पनिन पसंदीद बात।

सुनिए और सुनाइए रेडियो विविधता, सुनना भूल ना जाइए। आपका रेडियो आपकी अपनी आवाज, रेडियो विविधता 90.0 FM पर हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो विविधता, आपका अपना रेडियो आपकी आवाज दिल से।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विस्तार है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

रेडियो विदस्ता 90.0 MHz पर, घर घर की आवाज, रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का।

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अम्बाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अम्बाला का अपना रेडियो। पेश है कार्यक्रम पहलू और गीत एपिसोड 10। पेश करेंगे आज ये किरणी।
2: सभी श्रोताओं को किरणी का प्यार भरा नमस्कार। मैं आज आपके सामने एक नया अंक पहलू और गीत का लेकर आई हूँ। चलते चलते कुछ सपने भी साथ ले चलो, हर कदम पर खुद से ही कर दो एक नया वादा।

बड़ी दूर से आए हैं कहानी लेकर साथ, दिल की बातों का सिलसिला है ये अनजाने रास्ते का राज़।

साथी रे जिंदगी की राहों में चलते रहो, खुशियों में गम में हमेशा साथ निभाते रहो, हर कदम पर साथ चलते रहो।

रोशन चेहरे में खिलती है मुस्कुराहट के फूल, दिल में छुपी है खुशी और आंखों में चमक का राज।

इसके साथ ही आज के पहलू और गीत का अंक यहीं पर समाप्त होता है। दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार, जय हिंद, और अपना फीडबैक 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर देते रहिए।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम पहलू और गीत एपिसोड 10, पेश किया आरजे किरने ने, रिकॉर्ड एडिट किया दीपक कश्यप ने, निर्देशन भारत सोपोरी। ये थी FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता की पेशकश।

थम सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता। अंबाले का अपना रेडियो, सुनते रहो अपने पसंद के गाने।

बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।

सुने अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

FM 90.0 MHz पर आप सुन रहे हैं रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, अंबाला का अपना रेडियो, और मैं हूं आपका रेडियो हम सफर नरेश शर्मा। मेरे एक मित्र हैं जो बाराबंकी में रहते हैं और बाराबंकी के सिविल कोर्ट में वो अधिवक्ता हैं, वकील प्रैक्टिस करते हैं। नाम है उनका अनिल यादव, लेकिन उनको लिखने का बहुत शौक है। वो लिखते हैं और मजे की बात ये कि लिखते भी हैं तो ऐसा लिखते हैं कि दिल में उतर जाता है। मैं चाहता हूं आपको उनकी मैं रचना सुनाता हूं। उनकी रचना जिसका शीर्षक है रोटी और दाल, इस रचना के रचनाकार हैं बाराबंकी के अधिवक्ता श्री अनिल यादव। हमारी उम्र हुई 60 पर रिटायर नहीं हुए, इच्छाएं खत्म नहीं हुई, और पैसा कहां से आए? अपने बेटे का घर तो हो गया, अब पोते का घर कैसे बने? सबके पास BMW हो जाए। बात यह कि इच्छाएं तो तब भी पूरी नहीं होंगी। आखिर कितना पैसा हम कमाएंगे? बच्चों को कितने करोड़ का मालिक बनाना चाहते हैं? गाड़ी है, मकान है, शोहरत है, अरे आखिर हमारे खाने की प्लेट में तो चार रोटी और दाल सब्जी ही रहेगी ना। फिर बच्चे अरबपति बन जाएंगे, सोने के महल में रहेंगे, पर हमें तो 80 वर्ष की उम्र में भी वो प्लास्टिक की प्लेट में रोटी और दाल का ही इंतजार रहेगा। बस यही रोटी दाल ही जीवन का सार है। हमारे पूरे जीवन की कमाई, मेहनत की लड़ाई, अधिक से अधिक पैसा कमाना नहीं, जीवन को जीवन की तरह जीना होना चाहिए। एक किसान जब पूरा दिन हल चलाकर टूटी चारपाई पर चार रोटी सूखी मिर्च की चटनी के साथ खाता ना, वो चैन से सोता है, उसको दुनियादारी की कोई खबर ही नहीं होती। और जो चांद की रोशनी होती है ना, वो इसके लिए ट्यूबलाइट होती है। 5-star या 2-ton का AC उसका खुला आसमान होता है। यकीन करें उसे कब सुबह हुई पता ही नहीं चलता। और हम 40,000 का पलंग हो, 20,000 के गद्दे हो, 4,000 की चादर हो, 40,000 का AC हो, रूम में हीटर लगा हो, पूरी आधुनिक सुख सुविधाएं हो, 56 भोग का खाना खाकर भी रात भर करवटें बदलते हैं, 4-4 टेबलेट खा लेते हैं, तब भी सो नहीं पाते। आखिर सुखी कौन है? जाना तो सबने उसी बांस पर है, इसलिए उतनी मेहनत करो जितना आपका परिवार, आपके बच्चे आपसे बढ़िया तरीके से जिंदगी गुजर लें। और जिंदगी गुजारने के बाद में स्वर्ग देने की लालसा में अपना जीवन बलिदान न करें। अब जीवन साथी के साथ कुछ साल चैन की नींद लें, बच्चों के पंख को इतना भी मजबूत ना बनाएं कि वो उन्मुक्त होकर गगन की इतनी ऊंचाइयों पर उड़ जाएं कि नीचे उतरने का रास्ता भी ना मिले उन्हें। जब उम्र के पायदान 85 के ऊपर जाते हैं तो पैसा या खाना ये अच्छा नहीं लगता, बल्कि बच्चों का साथ अच्छा लगता है। और वो तब मिलता है जब हम आपस में ना मेलजोल सामंजस्य बैठा कर रखते हैं। इसे जीवन की महत्वाकांक्षा, इच्छाओं और परिवार के प्रति हमारे कर्तव्यों को समझने में एक तरीका मिलता है। हम पूरी जिंदगी धन, शोहरत और संपत्ति के पीछे भागते हैं और अपने बच्चों को इतनी और अधिक समृद्ध और सफल बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आखिरकार जीवन का असली सुख केवल बुनियादी चीजों में है, जैसे 2 रोटी दाल और परिवार का साथ। वहीं कुल मिलाकर संदेश यह है कि अधिक से अधिक धन और विलासिता हमें वह संतोष नहीं दे सकती जो हम एक साधारण और संतुलित जीवन से प्राप्त कर सकते हैं। अभी देखिए, किसान की साधारण जीवन शैली और उसकी गहरी नींद इस बात का प्रतीक है कि खुशी और संतोष बाहरी चीजों से नहीं बल्कि आंतरिक संतुलन और सादगी से आते हैं। हमें याद रखना चाहिए कि हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य केवल अधिक पैसा कमाना नहीं होना चाहिए, बल्कि जीवन को सही मायनों में जीना आना चाहिए, अपने परिवार और रिश्तों में संतोष और सुख आना चाहिए। ये महत्वपूर्ण है और इसके लिए हमें साधारण रहना पड़ेगा, दिखावा छोड़ना पड़ेगा, जो चीजें
शरीर को, सोच को, आत्मा को खराब करती है उनको त्यागना पड़ेगा, क्योंकि दो रोटी और दाल कुल मिलाकर यही तो हमारे शरीर की मूलभूत आवश्यकता है। और इसके साथ प्यार जो आपको अपनों से, अपने परिवार से मिलता है, तो अपने परिवार के साथ जुड़िए, अपनों के साथ जुड़े रहिए, उनके साथ स्नेह कीजिए, उनका सम्मान कीजिए।

0: झुकाना है।
1: तो कैसी लगी आपको ये रचना? हमें हमारे टेलीफोन नंबर 7056413010 पर अवश्य बताएं। धन्यवाद। नमस्कार। जय भारत। जय हिंद।

दोस्तों भोजन एफएम नमत अशारिया सिफर रेडियो विदस्ता हम सफर जिंदगी हूं भोजन रूजियो पनिन पसंदीदा बात।

माँ हो चकाचक फिर लो पान चबा। आहा।

फिर छू ले उसे। मैं तुम्हारे कदमों को नाप लूं अपनी उंगलियों से, कुछ फासले रहने दूं और कुछ मिटा दूं, शायद ये बचे फासले मुझे तुम्हारे करीब आने को कहें, ताकि मैं इन्हें अपना कर आने वाले कल के सपनों को साकार कर सकूं। तुम्हारा आंचल मखमली उम्मीदों से भर दूं। आओ आओ चले दूर तक, वहां तक जहां जमीन और आसमान का मिलन हो अपनी तमन्नाओं के साथ।

सहमा, पर बेवजह परेशान यूं ही बिखरा बिखरा अपने अतीत को याद करता, अपनी परछाई से कई बार सवाल करता, रूहों के सफर के रहस्य को जानने की कोशिश करता। वक्त से पहले जो लोग चले जाते हैं उनके अपनों के दुख में शामिल होना, कुछ ऐसे एहसासात, कुछ ऐसे जज्बात जो मेरे साये को घेर लेते हैं, जकड़ लेते हैं और नोच लेते हैं बेवजह।

चले हम साथ साथ, उम्मीदों के चिराग रोशन करें ताकि एक नई सुनहरी सुबह हमें अपनी बाहों में समेट ले। भूल जाए बीते मौसम की यादों को जब तुम तन्हा थी और मैं भटकता मुसाफिर। क्यों न इस मौसम में याद करें ढलती शामों को, सुरमई उजालों को, रात की नर्म मिजाजी को, तुम्हारी मासूम अदाओं को। इस सफर में फिर से साथ साथ लड़खड़ाएं और दूर तक चले संभलते संभलते संभलते।

तुम्हारे मेरे दरमियान इन फासलों को नजदीकियों में तब्दील करने की कोशिश करें, फिर से इस खामोश पानी में पत्थर फेंकें ताकि इन लहरों का मिलन साहिलों से हो। आओ इन बादलों को अपनी मुट्ठी में कैद करें और फिर से पहले ही की तरह बारिश में भीग जाएं। मैं तुम्हारी हथेली में अपना अक्स ढूंढ लूं ताकि अपनी बिखरी सूरत संवार सकूं। आओ हम दोनों आज ये अहद करें कि नहीं बिछड़ेंगे फिर से कभी, और तुम्हारे मेरे दरमियान इन फासलों को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कहें।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, अंबाला का अपना रेडियो। मैं आपका रेडियो दोस्त दीपक कश्यप आपका स्वागत करता हूं। आज के कार्यक्रम फिल्मी किस्से एपिसोड 4 में हम हर बार बात करते हैं किसी भी एक पुरानी फिल्म के बारे में और जानते हैं उनके अनकहे किस्से और सुनते हैं उस फिल्म के गीत। आज हम बात करेंगे ऐसी फिल्म के बारे में जिसके गीत और किस्से आपको खूब आनंद देंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ 1971 में बनी फिल्म आनंद के बारे में। फिल्म 12 मार्च 1971 को रिलीज हुई थी और उस समय की सुपरहिट फिल्म भी रही। फिल्म आनंद में लीड रोल में थे उस समय के सुपरस्टार राजेश खन्ना जी और स्पोर्टिंग एक्टर थे महानायक अमिताभ बच्चन जी। वैसे उस समय किसे पता था इस फिल्म में स्पोर्टिंग रोल में नजर आए अमिताभ बच्चन एक समय आने पर अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर बॉलीवुड इंडस्ट्री के एंग्री यंग मैन और आने वाली सदियों के महानायक कहलाए जाएंगे। और इस फिल्म के निर्देशक थे ऋषिकेश मुखर्जी। आइए सुनते हैं इस फिल्म का एक प्यारा सा गीत और शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की और लौट कर बताएंगे आपको इस फिल्म के अनकहे किस्से।
1: मैंने

उस समय के सुपरस्टार राजेश खन्ना और इस सदी के महानायक अमिताभ बच्चन की फिल्म आनंद, अब भी इसकी कहानी, इसके पात्र, इसके गाने सभी के दिलों में बिल्कुल ताजा है। इस फिल्म से लोगों ने जिंदगी के हर लम्हे को खुलकर जीना सिखा दिया था। इस फिल्म को देखकर जब लोग थिएटर से निकलते तो सभी की आंखें नम होती थी और जहन में सिर्फ एक ही बात होती थी, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। और इसी से जुड़ा मन्ना डे का गाना जिंदगी कैसी है पहली को शुरुआती क्रेडिट के साथ बैकग्राउंड में बजाया जाना था और उस समय बैकग्राउंड स्कोर के हिस्सों के रूप में इस्तेमाल किए गए गाने फ्लॉप होने के लिए जाने जाते थे। जब राजेश खन्ना ने यह गाना सुना, उन्होंने ऋषि दास से पूछा, आप इसे पृष्ठभूमि यानी बैकग्राउंड में क्यों बर्बाद करना चाहते हैं? फिर यह गाना राजेश खन्ना पर जुहू बीच पर फिल्माया गया और सुपरहिट भी हो गया। आनंद लीजिए इस प्यारे से गीत का और लौटकर आपको बताते हैं कैसे यह रोल राजेश खन्ना जी को मिला और कौन थे वो कपूर खानदान के स्टार जिन्हें आनंद फिल्म का किरदार ऑफर हुआ था। सुनते रहें FM 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, अंबाला का अपना रेडियो। और कार्यक्रम चल रहा है फिल्मी किस्से एपिसोड 4 दीपक कश्यप के साथ। और बात कर रहे थे कि कौन थे वो कपूर खानदान के स्टार जिन्हें फिल्म आनंद का किरदार ऑफर हुआ था। ऋषिकेश मुखर्जी इस फिल्म में पहले राज कपूर के भाई शशि कपूर को आनंद के किरदार के लिए चाहते थे, मगर किसी कारणवश शशि कपूर ने फिल्म के लिए मना कर दिया था। इसके बाद ऋषिकेश दा ने राज कपूर को आनंद के किरदार के लिए सोचा, लेकिन उस समय राज कपूर बीमार चल रहे थे। इस रोल के लिए किशोर कुमार भी ऋषि दा की पसंद कहलाए गए। साथ ही उन्होंने यह कहानी एक बार अभिनेता धर्मेंद्र जी को सुनाई थी। कहानी सुनकर धर्मेंद्र बहुत खुश हुए थे और उन्होंने कहा कि यह फिल्म तो मैं ही करूंगा। कुछ दिनों बाद अखबार में छपा कि आनंद फिल्म के हीरो राजेश खन्ना होंगे। फिर क्या था, धर्मेंद्र जी ने देर रात ऋषि दा को फोन किया और अपनी नाराजगी जताई। ऋषिकेश दा उन्हें शांति से समझाते रहे और बोले कि इस बारे में सुबह बात करते हैं, लेकिन धर्मेंद्र जी इस बात से बहुत खफा थे। इसी बात से परेशान होकर ऋषिकेश जी उस दिन पूरी रात जागे थे। अब आइए सुनते हैं इस फिल्म का एक और प्यारा सा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, अंबाला का अपना रेडियो। कार्यक्रम चल रहा है फिल्मी किस्से एपिसोड 4 दीपक कश्यप के साथ, और बात हो रही है आनंद मूवी के बारे में। और अब वक्त है आखिरी किस्से का। हमने हमेशा ललिता पवार जी को नेगेटिव रोल में ही देखा था। ज्यादातर मूवी में उन्हें कठोर जालिम सास का या सोतेली माँ का रोल दिया जाता था, लेकिन ऋषि दा अलग किस्म के डायरेक्टर थे। उन्होंने हमेशा अपनी फिल्म में कुछ नया दिखाने या पेश करने की कोशिश की, और इस फिल्म में ललिता पवार ने कठोर लेकिन नरम दिल नर्स डीसा की भूमिका निभाई। यह पहली बार नहीं था कि ऋषि दा ने पावरफुल पवार को एक दयालु कैथोलिक के रूप में पेश किया था। उन्होंने ऋषि दा को वैम्प्स यानी फीमेल विलियन सिंपती वाले रोल में कास्ट करना खूब भाया, जैसे अनुपमा में शशिकला जी और अभिमान में बिंदु जी। साथ ही इस फिल्म की कोई फीमेल लीड नहीं थी। सुमित सान्याल को अमिताभ बच्चन के सामने कास्ट किया गया था, हालांकि उनके लिए कोई गाने की स्थिति नहीं थी, लेकिन ऋषि दा ने एक गाना बनाया क्योंकि वह फिल्म में अपनी पसंदीदा लता मंगेशकर का कम से कम एक गाना चाहते थे। इस तरह संगीतकार ललित चौधरी ने आनंद के लिए कंपोज किया सदाबहार गाना ना जिया लागे ना। अब आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की इजाजत चाहूंगा और आपको छोड़े चले जाऊंगा लता मंगेशकर जी के गाए हुए इस गीत के साथ। अगर आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आया हो तो हमें फीडबैक जरूर दें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर 7056413010 पर। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई फिल्म नए किस्से के साथ। सुनते रहें FM 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, अंबाला का अपना रेडियो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।

सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्मी किस्से एपिसोड 4, लेखक एडिटर व प्रस्तुतकर्ता दीपक कश्यप, निर्देशन सेजल पुंज। ये थी FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता की पेशकश।

पेश है कार्यक्रम काव्य गोष्ठी एपिसोड 6। हमारे आज के मेहमान हैं डॉक्टर विनय कुमार मल्होत्रा। प्रस्तुत करेंगे भरत सुपोरी।

0: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, अंबाला का अपना रेडियो। ये सामुदायिक रेडियो अंबाला कैंट के लिए कार्यरत है, जिसकी स्वीकृति मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से मिली है। अंबाला के प्रगति पथ की जिम्मेदारी है FM 90.0 MHz की। इसलिए अंबाला के हर एक व्यक्ति का दायित्व है कि अपनी ओर से समाज को सकारात्मक संदेश या सामाजिक कार्य के बारे में अवगत कराएं इस FM 90.0 MHz के माध्यम से। इसी श्रृंखला में आज हमने आमंत्रित किया है अंबाला कैंट के एक शिक्षा विद्वान, सामाजिक कार्यकर्ता, जिन्होंने अपना सारा जीवन सेवानिवृत्ति से पहले भी और बाद में भी लोगों और आम जन के लिए समर्पित किया है। आपने इनको कई बार सुना है FM 90.0 MHz पर पहले भी, पर आज हम उनकी एक और काबिलियत पर बात करेंगे, वो है कविता पाठ, और जानेंगे आगे उनके क्या कार्यक्रम हैं। आइए आज के काव्य गोष्ठी एपिसोड 6 कार्यक्रम में स्वागत करते हैं प्रोफेसर वीरसेन विनय मल्होत्रा ट्रस्ट के प्रधान डॉक्टर विनय कुमार मल्होत्रा सर का। सर, आपका स्वागत, अभिनंदन एक बार फिर स्टूडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर।
1: भारत स्पोरी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने आज मुझे दोबारा अपने FM रेडियो वितस्ता के स्टूडियो में बुलाया है। बहुत अच्छा लगा दोबारा यहाँ आकर और आप सबसे रूबरू होकर।
0: सर, आपका परिचय तो आपका नाम ही है। आज हम आपके कविता लिखने के उत्कृष्ट कला की बात करेंगे, और इसके साथ ही मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या अनुभव है आपको अंबाला कैंट के इस FM स्टेशन के प्रसारण पर।
1: बहुत अच्छा अनुभव है, और लगभग मैं सुबह के टाइम पे अवश्य इसको सुनता हूं, और जो हमारा एक घर में लॉबी है जहां हम सब लंच डिनर खाते हैं किचन के पास, वहीं रेडियो पड़ा हुआ है FM रेडियो, और चलते फिरते चाहे कोई किचन में काम कर रहा है, चाहे खाना खा रहा है, ब्रेकफास्ट कर रहा है, तो आपका प्रोग्राम चलता ही रहता है सारा दिन लगभग, तो बड़ा अच्छा लगता है। इसके डिफरेंट आपके अखबारों के ऊपर राय आती है सुबह, कृषि के ऊपर प्रोग्राम आता है, गानों का प्रोग्राम आता है, इनसे मिलिए प्रोग्राम आता है जिससे विभिन्न प्रकार के आप ज्ञानी तथा गुणवान लोगों से मिलवाते हैं, फिर काव्य गोष्ठी का प्रोग्राम आता है, तो सारे प्रोग्राम में लगभग सारे ही सुनता हूं।
0: सर, हमारा भी लक्ष्य यही है कि हम अंबाला के हर एक वासी तक पहुंचे, चाहे कोई कला के साथ जुड़ा है, चाहे कोई सामाजिक कार्य के साथ जुड़ा है, चाहे कोई शिक्षा के साथ जुड़ा है, और ये जो सामुदायिक रेडियो है ये अंबाला के हर व्यक्ति के लिए दिया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके आशीर्वाद और आपके फीडबैक के लिए, हमेशा आप हमारे साथ हैं। तो आइए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपसे सर जानना चाहूंगा कि कविता के प्रति कब से आपका ध्यान गया, और सबसे पहले कविता कौन सी आप हमें सुनाना चाहेंगे।
1: कविता की तरफ ध्यान या इसका मेरा लिखने का शौक कैसे पैदा हुआ, ये एक बहुत अजीब सी बात है, क्योंकि मैंने कविता लिखने या कैसे बोली जाती है, कैसे कविता पाठ की जाती है, इसकी कहीं से कोई, जिसे कहते हैं फॉर्मल शिक्षा नहीं ली या कोई ट्रेनिंग नहीं ली, जैसे कि कई बार कई लोग लेते हैं, बड़े बड़े शायरों से लेते हैं कि कैसे शायरी लिखी जाती है, लेकिन मैंने कभी किसी से ट्रेनिंग नहीं ली। बस जो मेरे मन में भाव आते थे, शुरू शुरू में लोग उसे तीर तुक्का कहते थे, तो मैंने ऐसे लिखना शुरू किया, और मोस्टली मैं लिखा करता था। कई बार जैसे हमें कई संस्थाओं में जाकर के ना कोई भाषण देना पड़ता था, कोई एड्रेस करना पड़ता था, तो अपने एड्रेस को मैं रुचिकर बनाने के लिए कोई छोटी छोटी उनमें चार लाइनों की, छह लाइनों की कविता बोला करता। तो एक बार ऐसी रुक्मिणी देवी हाल में रोटरी का ही फंक्शन था, एक बार 20-25 साल पहले की बात है, तो वहां भी एक मेरा भाषण था ब्रीफ सा 5-6 मिनट का, तो उसमें मैंने आधा एक मिनट की छोटी सी कविता बना के वो भी बीच में बोली। तो बाद में जब लोग मिले फंक्शन के बाद, मुझे एक दो लोगों ने कहा आपका भाषण तो अच्छा ही था, जो आपने बीच में वो कविता का पुट लगाया ना, तड़का दिया, उससे मजा आ गया,
0: बहुत अच्छा थी।
1: तो उन्होंने कहा आप क्या कविता अपनी लिखते हो, कोई छपी है आपकी? मैं क्या, ना, मैं तो ऐसे पढ़ा और फेंक देता हूँ लिखा हुआ हाथ का, वो जो कागज का रुक्का मेरे कभी रखा ही नहीं, ऐसे ही कहते ना ना उस व्यक्ति ने मुझे समझाया कि नहीं ऐसे मत किया करो, आप बड़ा अच्छा लिखते हो और आप अपनी एक फाइल बनाओ, जब जब भी आप कुछ लिखो उसमें इकट्ठे करते जाओ, तो 2-4 साल बाद हो सकता है वो कुछ बहुत अच्छी कविताएं बन जाए और फिर आप उसको छपवाना। तो ये उसका वो आइडिया मुझे क्लिक किया और उसके बाद मैंने वैसे ही करना शुरू किया।
0: जिंदगी के सफर में जब हम आगे चलते हैं, कोई भी व्यक्ति हमारी जिंदगी को सुधारने के लिए, उसको एक दिशा देने के लिए कोई भी बात अगर या कोई भी इशारा कर देता है, उस इशारे में शायद हमारी जिंदगी का एक एक नया रास्ता शुरू हो जाता है, जैसे आपने कहा
1: दिशा निर्देश मिल जाता है।
0: और उसके बाद क्या आपने फिर वैसा ही करना शुरू कर दिया?
1: फिर मैंने वैसे फाइल बनाई, उसमें जो लिखता हुआ, फिर उससे ओके मेरे और लिखने का भी शौक बढ़ गया
0: जी।
1: मैं फिर और कविताएं लिखने लग गया। फिर उसके बाद मेरी 2005 में एज ए प्रिंसिपल अपॉइंटमेंट हो गई शाहबाद
0: जी,
1: मारकंडा नेशनल कॉलेज
0: जी।
1: तो वहां फंक्शन होते ही रहते हैं, जैसे आपको मालूम है कॉलेजेस के अंदर मुख्य अतिथि भी आते हैं, प्रिंसिपल को उनका स्वागत भी करना पड़ता है, बोलना ही पड़ता है। तो मैं उन भाषणों में भी जो है अपनी लिखी हुई कविताएं डालता था। मान लो भाषण 2 या 3 मिनट का, तो 1 मिनट की 1.5 मिनट के बीच में कविता भी होती थी। तो वो लोगों ने वहां बड़ी पसंद करनी शुरू की। तो वहां के एक MLA थे उस टाइम में, KL शर्मा जी
0: जी,
1: तो हमारे एक फंक्शन में कई बार आए, तो मैंने हर बार उनके उनके ऊपर ही लिखी हुई और कुछ कॉलेज से रिलेट करके कविता सुनाई, तो उनको भी बड़ी पसंद आती थी लोगों ने। तो फिर मुझे और भी आदत पड़ गई हर भाषण में ही या एड्रेस में थोड़ी कविता डालने की, तो इससे कविताएं बनती चली गई
0: जी। श्रोताओं, आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं, हमने डॉक्टर विनय कुमार मल्होत्रा जी के साथ पहले भी बात की है, पर आज हम डॉक्टर विनय कुमार मल्होत्रा जी की लिखी कविताओं पर ही बात करेंगे। और सर, कौन सी कविता आप सबसे पहले हमें सुनाएंगे और उसकी पृष्ठभूमि भी अगर आप बताएंगे तो अच्छा रहेगा।
1: मेरी जो पहली कविता संग्रह छपा, जिस साल मैं रिटायर हुआ था उसके एक साल बाद, उसी साल शायद 2014 में, तो उस पुस्तक का नाम था सहज गीत।
0: ओके।
1: तो उसकी जो पहली कविता है वो मैंने डेडिकेट की अपने धोते को, जिसकी 5 वर्ष की आयु में ही मृत्यु हो गई, वो स्वर्ग सिधार गया। बहुत अच्छा प्यारा बच्चा था, हेल्दी, गोरा चिट्टा, को देख के कह नहीं सकता था इसको कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, लेकिन उसको चाइल्ड कैंसर, बड़ी एक रेयर चीज होती है, वो हुआ और वो 5 साल की आयु में ही वो चल बसा। तो जब उसका जन्म हुआ था 2014 में, तो उस पर जो है मैंने ये गीत लिखा था, तो वो मैं सबसे पहले जो है वो आपको सुनाऊंगा। मैं प्रभु की आंख का नूर हूं, उसका नाम था प्रभु नूर, यानी कि प्रभु का नूर
0: जी।
1: मैं प्रभु की आंख का नूर हूं, मैं सभी की आंख का नूर हूं, मैं सभी के दिलों का करार हूं, मैं सभी के काम आऊंगा, मैं वह एक जोश बहार हूं, मैं प्रभु की आंख का नूर हूं, मैं तो एक खिलता फूल हूं, मैं माँ बाप की आंखों का तारा हूं, जो चमक रहा वह सितारा हूं, जो उभर रहा वह गुबार हूं, मैं प्रभु की आंख का नूर हूं, मेरा रंग रूप निखर गया, मेरे अपने मुझसे मिल गए, जो चमन बहारों से भर गया, मैं उसी का जीता जागता रूप

0: के दिलों का करार हूँ, मैं प्रभु की आंख का नूर हूँ।
1: डॉक्टर साहब, खूब शब्द आपने उनकी याद में लिखे। हम रेडियो वितस्ता परिवार की ओर से यही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उनकी आत्मा को अपने चरणों में जगह दें और आपको भी हौसला दे कि याद करते करते भी आप उनको अपने साथ जोड़े रखें। तो ये प्रभु ने एक हमें एक जिम्मेदारी दी होती है और ये जिम्मेदारी हर कोई नहीं निभा पाता है। जब हम जिंदगी में आगे बढ़ते हैं तो परिवार हमारे लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है और परिवार के सपोर्ट के साथ ही हम आगे की ओर चलते हैं। जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है तो हम भी डॉक्टर साहब आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। अगले प्रश्न की ओर ले जाता हूं मैं आपको। ये जानना चाहते हैं हम कि आपके कविताओं में अमूमन कौन से किरदार नजर आते हैं और आपके छपे कवि संग्रहों के बारे में भी आप हमें और श्रोताओं को बताएं।
0: मेरी कविताएं कई प्रकार की हैं। मैंने कविताएं भी लिखी हैं और गीत भी लिखे हैं
1: जी,
0: और कई गीत ऐसे हैं जो बिल्कुल बड़े अच्छी तरह से गाए जा सकते हैं और कुछ गीत ऐसे

0: जैसे अम्बाले की एक शख्सियत है डॉक्टर जयदेव जी, जिन्होंने रोटरी हॉस्पिटल बनाया है
1: जी,
0: जो ये पवित्र धाम स्कूल बनाया है गूंगे बहरे बच्चों के लिए
1: जी,
0: उन पर लिखी है। एडी गांधी जी हैं अम्बाला के सबसे पहले चार्टर्ड अकाउंटेंट, उन पर कविताएं लिखी हैं। प्रिंसिपल देशबंधु पर लिखी है, कविता लिखी हुई है, और जैसे कई प्रोफेसर्स हैं उनके ऊपर लिखी हुई है। मधुसूदन टंडन है एक अम्बाले के इंडस्ट्रियलिस्ट, उनके ऊपर। तो जो अम्बाले के व्यक्ति हैं, आम व्यक्ति हैं, उनके ऊपर कविताएं लिखी हैं, बड़ी लिखी हैं मैंने। अपने दोस्तों पर लिखी हैं, जो मेरे स्कूल से लेकर कॉलेज तक के दोस्त थे, उनकी क्या खूबियां हैं उनके ऊपर कविताएं लिखी हैं। और उसके बाद फिर मैंने नेताओं के ऊपर भी कविताएं लिखी हैं। नेताएं जैसे शाहबाद में मैंने नौकरी की 10 साल, तो वहां के एमएलए हुए मेरे समय में 2, केएल शर्मा जी, अनिल धनतोड़ी जी, उन पर बड़ी कविताएं लिखी। हमारे अपने यहाँ एमएलए हैं अम्बाला के और इस समय मंत्री भी हैं श्री अनिल विज जी, उन पर मैंने कई गीत और कविताएं लिखी हैं, कई लिखी हैं, सब छपी हुई हैं वो। उसके अलावा जितने भी भारत के महान नेता हैं, जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, उनके ऊपर मैंने कविता लिखी है। सुषमा स्वराज जी हैं जो अम्बाले से ही थी, विदेश मंत्री रही भारत की, उन पर कविता लिखी है बड़ी, जिसमें उनका सारे जीवन का सार है।
1: तो इसका मतलब है कि जो मेरा प्रश्न है यह बहुत ही प्रासंगिक है कि आप हर एक व्यक्ति से जिनसे आप परिचित है, आप उनके किरदार को अच्छे से समझने के बाद कविता लिख लेते हैं। तो अब आप हमें कौन सी कविता सुनाना चाहेंगे, यह हम आपके ऊपर ही निर्णय छोड़ देते हैं।
0: मैंने कवि ये व्यक्तियों के अलावा जो है सामाजिक मुद्दों पर बड़ी कविताएं लिखी
1: जी,
0: जैसे समाज, जैसे अम्बाले में बिजली बड़ी जाती थी, इस पर कविता लिखी। अम्बाले के अंदर ये पशु सड़कों पर घूमते हैं, एक्सीडेंट का कारण बनते हैं, उन पर कविता लिखी। तो कहने का मतलब है सामाजिक मुद्दों पर मैंने, राजनीति की खूबियों पर मैंने वो भी कविताएं लिखी। हर पुस्तक में मेरी 5-7 कविताएं पॉलिटिक्स के ऊपर ही होती हैं।
1: डॉक्टर साहब, मैं चाहूंगा कि आज हम कविताओं का ही दौर चलाएं और मैं चाहूंगा कि आप कौन सी कविता अब हमें सुनाना चाहेंगे।
0: पहले
1: श्रोता भी इंतजार में है।
0: अर्जुन देव गांधी जी हैं अम्बाले के बड़े प्रसिद्ध चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो शुरू बहुत पहले उन दिनों में एकादी हुआ करता था, तब से हैं वो अम्बाले
1: जी जी।
0: तो वो एक बार हमारे कॉलेज में आए मुख्य अतिथि बन के वहां शाहबाद, तो उनके स्वागत में मैंने कविता लंबी है लेकिन मैं एका दो स्टांजा ही सुनाऊंगा। मैं कर रहा स्वागत कर कर लंबे हाथ, मैं कर रहा स्वागत कर कर लंबे हाथ, मैनेजमेंट स्टाफ स्टूडेंट सभी मेरे साथ।
1: क्या बात है।
0: हम कर रहे स्वागत कर कर लंबे हाथ, हम कर रहे स्वागत कर कर लंबे हाथ। अर्जुन देव गांधी नाम पर पूरे खरे उतरना, कृष्ण की गीता का पाठ सुनना सुनाना, आज हमें भी कोई उपदेश देकर जाना। क्योंकि जो गांधी जी हैं, जो जब भी कहीं बोलते हैं तो गीता में से कुछ प्रसंग निकाल करके जरूर सुनाते हैं,
1: जरूर सुनाते।
0: तो मैं कर रहा स्वागत करकर लंबे हाथ, हम कर रहे स्वागत करकर लंबे हाथ। चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना और पूरा नाम कमाना, बड़े लोगों के संकट मिटाना, टैक्स की अदायगी को भली भांति चुकाना
1: जी।
0: मैं कर रहा स्वागत करकर लंबे हाथ, हम कर रहे स्वागत करकर लंबे हाथ। बाकी बहुत लंबी है, बस इतना ही सफिशिएंट है।
1: और इसके साथ ही कोई और कविता जो आप सुनाना चाहेंगे।
0: मैंने पंजाबी, हिंदी, इंग्लिश तीनों भाषाओं में ही कविता लिखी है
1: जी।
0: और एक एक्सपर्ट पोएट थे, उन्होंने कहा था आप सबसे अच्छी कविता इंग्लिश में लिखते हो लेकिन मैं सुनाता कभी नहीं, क्योंकि वो लोगों को समझ नहीं लगती, लोग रुचि नहीं लेते। कविता पाठ जहां भी मैं करता हूँ वो हिंदी या पंजाबी
1: में ही करता हूँ जी।
0: लेकिन मैंने हरियाणवी में भी लिखी है कोई कोई कविता, मैं आपको विभिन्न रंगों में सुनाऊंगा कविताएं
1: जी जी।
0: अभी हिंदी में सुनाई दो, तो अब मैं आपको लाता हूं हरियाणवी में। मीठी बोली हरियाणा की अपना रंग दिखारी से, मीठी बोली हरियाणा की अपना रंग दिखारी से, रोटरी का गवर्नर आज अम्बाले में आयरिया से। रोटरी गवर्नर आए थे हमारे क्लब में, उनके स्वागत में
1: जी जी।
0: हरियाणा की मीठी बोली में स्वागत किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है। प्रांता में प्रांत हरियाणा नंबर वन पे आयरिया है, प्रांता में प्रांत हरियाणा नंबर वन पे आयरिया है, शहरा में शहर अम्बाला अव्वल बन के छाई रहा है, रोटरी में क्लब अम्बाला बेस्ट क्लब बन रहा है। मीठी बोली हरियाणा की अपना रंग दिखा रही है, हरियाणा की

0: मीठी बोली में स्वागत किया जा रहा से, स्वागत किया जा रहा से।
1: बहुत खूब सर,
0: मैं पूरी पूरी नहीं सुना रहा, इतना टाइम लगेगा।
1: बहुत खूब सर।
0: उसके बाद मैं आपको एक कविता सुनाता हूँ। एक हमारे कुलीग थे जीएमएन कॉलेज में, मैं नाम नहीं लूंगा, अच्छा नहीं लगता। उन्होंने शादी नहीं की, बड़े लोग शादी नहीं करते, तो उस पर मैंने कविता लिखी जो लोगों ने बहुत ही पसंद की, एक दो जगह मैंने सुनाई। कविता का शीर्षक है अच्छा किया तुमने शादी ना करके।
1: जी जी।
0: और मेरी हर कविता का जो बोलने का स्टाइल होगा, जिसे कहते हैं स्टाइल ऑफ प्रेजेंटेशन, वो एक सा नहीं होगा
1: जी, अलग अलग
0: अलग अलग होगा। आमतौर पे आप कवि शायरों को देखोगे एक ही स्टाइल से बोलते हैं, पता लग जाता है फलाना, बिना देखे ही आप कह दोगे फलाना व्यक्ति बोल रहा है। एक ही प्रेजेंटेशन होती है मेरी हर कविता या गीत की, प्रेजेंटेशन अलग होगी। अच्छा किया तुमने शादी ना करके, अच्छा किया तुमने शादी ना करके, हमें क्या मिल गया शादी करके, अच्छा किया तुमने शादी ना करके, अच्छा किया तुमने शादी ना करके। बड़े चाव से सेहरा बांधा था, बड़ी शान से तलवार लटकाई थी, बड़ी तड़ी से घोड़ी पर बैठे थे, शादी के बाद सिट्टी पिट गुल हो गई, शादी के बाद सिट्टी पिट गुल हो गई, अच्छा किया तुमने शादी ना करके। चाओ शांतड़ी सारी मिट्टी में मिल गई, आटे दाल का भाव मालूम पड़ गया, एक के बाद एक बच्चे पैदा हो गए, पप्पू बल्लू टीटू बिट्टू और रिंकू, श्रुति स्मृति स्वाति प्रीति और मित्तू, कोई मांगे खिलौना कोई मांगे साइकिल, कोई मांगे स्कूल की फीस कोई मांगे जेब खर्च, सारे के सारे पापा के पीछे पड़ गए, अच्छा किया तुमने शादी ना करके, अच्छा किया तुमने शादी ना करके, हमें क्या मिल गया शादी करके। बीवी की चिख चिख बच्चों की किच किच, बीवी की चिख चिख बच्चों की किच किच, बीवी की कर्कश धमनी बच्चों का शोरगुल, बीवी के तीखे तेवर बच्चों के गुस्से, सारे सहने पड़ते हैं हम मर्दों को, नखरे भी सहने पड़ते हैं हम पतियों को, अच्छा किया तुमने शादी ना करके, अच्छा किया तुमने शादी ना करके, हमें क्या मिल गया शादी करके, हमें क्या मिल गया पति और पिता बन के, अच्छा किया तुमने शादी ना करके, अच्छा किया तुमने शादी ना करके।
1: बहुत खूब डॉक्टर साहब, बहुत खूब। आपने तो सभी शादीशुदा लोगों को आज मरहम दे दिया, और जिसमें मैं भी एक हूं। बहुत खूब सर, बहुत खूब। ये जो एक तरीका प्रेजेंटेशन का है, वाकई इस तरीके का प्रेजेंटेशन कहीं नहीं होता, और प्रेजेंटेशन ही इस इन शब्दों को और अच्छे से हमारे मन मस्तिष्क तक पहुंचा दिया। आगे बढ़ते हैं सर, आपकी कविता क्या प्यार बिछड़न तड़प पर होती है, या हमारी दिनचर्या के बारे में होती है?
0: ज्यादातर कवि शायर जो हैं वो प्यार और तड़प के मारे हुए ही हैं।
1: अच्छा,
0: इसलिए वो इसलिए फील्ड मैंने उनके लिए छोड़ा हुआ है। बहुत कुछ लिख रहे हैं वो,
1: तो अब आप
0: और बहुत कुछ लिखा जा रहा है इसके ऊपर, प्यार तड़प इश्क
1: जी।
0: तो मैंने इन इन विषयों को बहुत कम लिया है, ना के बराबर। हाँ, मैंने अपनी पत्नी के ऊपर जरूर पोएम लिखी है 12,
1: वो भी हम बाद में सुनना चाहेंगे।
0: हाँ, लेकिन वो है इंग्लिश में। चलो, बाकी अभी मैं आपको नारी पर एक कविता सुनाता
1: हूँ।
0: नारी के ऊपर भी मैंने लिखा है, युवाओं के ऊपर भी लिखा है, बुजुर्गों के ऊपर भी लिखा है, उनकी समस्याओं के और शहीदों के ऊपर और देशभक्ति के ऊपर भी कविताएं लिखी है। तो नारी के ऊपर जो एक कविता है वो मैं आपको सुना रहा हूं। क्यों कहते हो नारी को अबला, क्यों कहते हो नारी को अबला, वह तो थी हर युग में सबला, वह तो है हर क्षेत्र में सबला, क्यों उठाते हो उसकी क्षमता पर सवाल, वह तो करती थी हर युग में कमाल।
1: क्या बात।
0: झांसी की रानी, सरोजनी नायडू, इंदिरा गांधी, महिलाएं तो हर युग की मिसाल। मदर टेरेसा, किरण बेदी, कल्पना चावल, महिलाओं ने तो जलाई हर युग में मशाल। बचिंद्री पाल, पीटी उषा, सानिया मिर्जा, महिलाओं ने तो मचाया खेलों में धमाल। लारा दत्ता, ऐश्वर्या राय, प्रियंका चोपड़ा, महिलाओं ने ही बिछाया सुंदरता का जाल। आओ सारे पुरुष मिलकर करें एक ख्याल, आओ सारे पुरुष मिलकर करें एक ख्याल, महिलाओं को बनने दे हम और भी बेमिसाल, महिलाओं को बनने दे हम और भी बेमिसाल।
1: क्या बात, क्या बात सर, क्या बात। महिलाओं के प्रति जो आपने इस कविता में दर्शाया है, और यही हमारे संस्कृति का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है। आपकी कविताएं हम सर सुनते रहेंगे। इस समय अब हमारे जो श्रोता है वो आपके एक पसंदीदा गीत का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इस कार्यक्रम में हम लोगों को कविताओं से तो सराबोर करते ही हैं, आपके पसंदीदा गीत भी हम उनको सुनाते हैं। तो कौन सा गीत आपको सबसे ज्यादा प्यारा है जो इस समय हम श्रोताओं को सुनाएंगे?
0: मैं प्यार इश्क पर बेशक लिखा ता नहीं हूँ, बहुत कम लिखा है, लेकिन गाने बड़े सुनता हूँ इनके
1: जी।
0: और इसी से रिलेटेड जो है वो गाना है, इन हवाओं में इन फिजाओं में मुझको तेरा प्यार पुकारे। इन हवाओं में इन फिजाओं में मुझ

0: डॉक्टर साहब, आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लग रहा है और जो आपकी कविताएं हैं वो हमें सराबोर तो करती हैं और मुझे उम्मीद है कि जो हमारे श्रोता हैं, जो हमारे सुनने वाले हैं, वो भी बहुत पसंद कर रहे होंगे। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहूंगा कि एक कवि जब अपने सोच को शब्दों में पिरोता है, क्या इसके लिए कोई खास समय निश्चित होता है?
1: कवि के लिए कोई समय निश्चित नहीं होता, और उसको जैसे ही कोई विचार आता है मन में, मस्तिष्क में आइडिया आता है, वह उसी समय लिखने बैठ जाता है। और उसको करना भी ऐसे ही चाहिए। यदि वो वेट करेगा कि मैं सुबह लिखूंगा या जब मुझे फुर्सत होगी फिर आराम से लिखूंगा, तो वो आइडिया कई बार चला जाता है दिमाग में से। तो अक्सर अधिकांश कवि जब भी उनको कुछ सूझता है उसी वक्त कलम पेंसिल लेकर वो लिख देते हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। वो सुबह का समय भी हो सकता है, रात को भी होता है, कई बार दिन में ही सूझ जाते हैं, कोई किसी बात सुनकर कई बार कोई आइडिया आ जाता है तो उस पे लिखा जाता है पूरी कविता।
0: यहाँ मैं जानना चाहूंगा कि आपने दिन की बात करी कि दिन में तो हमारे पास साधन और सब कुछ होते हैं, कई बार हम सोए हैं और सोने के बाद रात का समय है और जब हम जग जाते हैं, अगर उस समय कोई ख्याल आ जाए, क्या उस समय उस कवि का उठना और उसका लिखना जरूरी है?
1: हाँ, जरूरी है। जो अच्छा कवि है वो तो लिखेगा उठ के, सोएगा नहीं, उसी समय उठ के अपना पेन पेंसिल से अपने कागज पे लिखेगा ही लिखेगा आइडिया जो उसको आया, चाहे रात हो चाहे नींद में आया हो। और आजकल एक और भी सुविधा हो गई, ना भी लिखना हो तो मोबाइल पे रिकॉर्ड कर लो उस आइडिया को।
0: हाँ,
1: तो वो और भी अच्छी सुविधा हो गई लिखने की, भी दूसरी लेटे लेटे बोल के सारा आइडिया, एक तरह से एक रफ आइडिया तो रिकॉर्ड कर ही लो, फिर बाद में पॉलिश कर लो सुबह उठ के।
0: जी। तो आगे चलते हैं डॉक्टर साहब, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपसे करना जा रहा हूँ, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न करने जा रहा हूँ। प्यार मोहब्बत इश्क जब भी इजहार किया जाता है, उसमें शायरी और शेर का इस्तेमाल ज्यादा क्यों किया जाता है? तो कोई कविता जो इश्क मोहब्बत या इश्क माशूक को दर्शाती हो जो आपने लिखी हो, और आप इश्क और माशूक को किस तरीके से समझते हैं?
1: इश्क और प्यार पर जैसे कि मैंने कहा, वो आम तौर पे शायरों और कवियों का एक मुख्य विषय रहा है जिस पर वो लिखते हैं और लोग पसंद भी करते हैं
0: जी।
1: प्यार या इश्क आशिकी पर लिखी हुई कविता या शेरो शायरी, लेकिन मैं बहुत कम लिखा है इस पर, क्योंकि मैं प्यार का या इश्क का एक ज्यादा वाइडर मीनिंग अपने दिमाग में रखता हूं कि प्यार इश्क सिर्फ मेल और फीमेल में नहीं होता, वो एक दो दोस्तों में भी हो सकता है, वो भाई बहन में भी हो सकता है, वो बाप और बेटे में भी हो सकता है, वो फादर और डॉटर में भी हो सकता है। तो प्यार की एक वाइडर डेफिनेशन है मेरे माइंड में, और मेरा खुद का है। मेरी जो दोस्ती थी, आप मानोगे नहीं, मेरे से एक 25 साल बड़े व्यक्ति थे, अंबाला के बड़े मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट ओसा के लक्ष्मी सागर
0: जी।
1: और वो हमारे जीएमएन कॉलेज के प्रेसिडेंट भी थे, वो प्रेसिडेंट इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, मैं एक तरह का कॉलेज में उनका एम्प्लॉई तब लेक्चरर था, लेकिन फिर भी हमारी फ्रेंडशिप ऐसे थी कि जैसे हम उम्र की होती है। तो हमारा इस तरीके से जैसे कहते हैं फ्रेंडशिप हैज नो एज, तो वो वाली बात थी। खैर, अब वो दुनिया में नहीं है। तो ऐसे मैंने बड़ी व्यक्तियों को जो मुझे अच्छे लगते थे, जो मुझसे प्यार करते थे या मैं उनसे प्यार करता था, उन पर मैंने बड़ी कविताएं लिखी हैं और अपनी पत्नी पे भी लिखी हैं 12 कविताएं, और वो
0: इंग्लिश कविताएं,
1: हाँ, और वो इंग्लिश में है सारी।
0: अच्छा,
1: इसलिए उनको एक्सप्रेस करने का मौका नहीं मिलता। और बड़ी हैरानी की बात है कि वो मेरी पत्नी ने आज तक पढ़ी उन्हीं पोएम्स। आप कहेंगे वो क्यों नहीं पढ़ी, वो भी उसके पीछे भी कहानी है। जब मैंने उनके ये देखी, ये सारी कविताएं उन्हीं के ऊपर है, 12 ज्यादा किताब में भी छपी है, उनके बीच में फोटोवे भी है
0: जी।
1: उनको उन्होंने जब ऐसे ये, और मैंने उनको छुपा करके लिखी, बताया नहीं, जब छप गई फिर उनके हाथ में दी
0: जी।
1: मैंने लगा बड़े खुश होंगे, तो उन्होंने पता नहीं कोई ऐसी कविता पर उनके नजर पड़ गई जिस पे उनके बारे में कोई क्रिटिकल लाइनें थी दो। हर व्यक्ति का
0: जी
1: हर एस्पेक्ट होता है
0: जी,
1: गुण अवगुण, तो वो दो लाइनें उनके तो दूसरे एस्पेक्ट के बारे में थी, उन्होंने उस पर ही नजर गई, तो उन्होंने वो उसके बाद बंद ही कर दी किताब। और उसके बाद वो आज तक कविताएं पढ़ी नहीं, लेकिन वो कविताएं जो है वो जो है बड़ी मेहनत से मैंने लिखी थी, और उसके वो एक अलग स्टाइल उसमें अपनाया गया था
0: जी,
1: स्टाइल उसमें था। और मैं चैलेंज करता हूं जो इंग्लिश के जो प्रोफेसर्स हैं, वो नोट करके, जो तो बहुत समझदार व्यक्ति होगा, फट बता देगा आपने इसने एक रियली नई चीज पेश की है
0: जी। सर
1: मैं वो दो कविताएं पहले पढ़ती, छोटी सी जो
0: जी जी
1: अपने वाइफ के ऊपर है वो सुनाता हूँ। उनको डॉक्टर से बहुत प्यार है, मुझे भी है, लेकिन माताओं को ज्यादा
0: ज्यादा होता है।
1: तो उसी के ऊपर सिर्फ छोटी सी कविता है, लाइट ऑफ हर आईज, हर का मतलब मेरी मिसेज नीना, लाइट ऑफ हर आईज डॉटर्स, कि उसकी आंख का तारा है
0: जी।
1: नीना हैज वीकनेस फॉर बेब्स एंड सकलिंग्स, शी हैंडल्स दीपाली एंड सोनाली विद किड ग्लोव्स, शी हैज द लाइट ऑफ आईज फॉर डॉटर्स, शी स्पेयर्स नो पेन्स डूइंग हर ड्यूटी टुवर्ड्स डॉटर्स, ब्लो हॉट कोल्ड विद डॉटर्स, कभी गुस्सा भी करती हैं कभी प्यार भी करती हैं, ब्लोज हॉट एंड कोल्ड विद डॉटर्स, कीप ऑन ए फिर्म होल्ड ऑन देम, नोज हाउ टू कीप सिबलिंग्स एंड अदर्स विद इन बॉन्ड्स, थ्रोज कोल्ड वाटर ऑन माई प्लानिंग अबाउट माई डॉटर्स कैरियर। ये अखीरली लाइन थोड़ी क्रिटिकल है, लेकिन ये आठ लाइनों की कविता है। और एक कविता जो मिसिस के ऊपर, वो भी छोटी कविता है, ये 12 कविता, ये देखिए कितनी बड़ी बड़ी कविता है, लेकिन मैं सिर्फ दो छोटी वाली सुना रहा हूं। इसका टाइटल है द ओरेटर। मेरे मिसिस अपने स्कूल कॉलेज के टाइम से बहुत अच्छी वो थी, वक्ता स्पीकर। और सुषमा स्वराज उन दिनों में एसडी कॉलेज में पढ़ती थी, जो बाद में सेंटर में मिनिस्टर बनी, और ये जीएमएन में पढ़ती थी
0: जी।
1: जब भी कभी डेक्लामेशन कॉन्टेस्ट होता था कॉलेज का,
0: इन दोनों
1: की टीम से आती थी सुषमा स्वराज और जीएमएन से आती थी नीना
0: जी।
1: तो इनकी आपस में कंपटीशन चलता था, बराबर की चोट थी
0: जी।
1: वो ओरेटरी के बल पर वो आगे राजनीति में निकल गए, ये इनका कैरियर कॉलेज में बना एज ए प्रोफेसर। तो ओरेटरी पर कविता है उनकी, ओरेटरी की खूबी पर। She has made noise in the world by her oratory. Her speeches brought down the house. As good orator, she carries hearers with her. सुनने वाला उनके साथ हो जाता है। She strikes the right note on many occasions. Has bone to pick with others on many subjects. Throws her ideas and plans emphatically. Has a tilt at others in the debates and seminars, speaks by the card with others, oils her tongue when talks to seniors. जब भी वो अपने सीनियर से बोलती थी बड़ी तमीज से, कभी भी अपने कॉलेज में भी है किसी से भी, कभी ऊंचा नीचा नहीं, सीनियर से हमेशा तमीज से ही बोलना है। Oils her tongue when talks to seniors. तो ये एक छोटी सी कविता थी उनकी ओरेटरी पर।
0: बहुत खूब। और मैं नीना जी को ये कहना चाहूंगा, इस समय जब ये प्रोग्राम सुन रहे होंगे, और इस समय बहुत ही प्यार और सद्भाव से डॉक्टर साहब ने जो कविताएं आप पे लिखी हैं वो हम सबसे साझा की, तो मुझे उम्मीद है कि आपको भी ये कविताएं पसंद आएंगे।
1: अब आपने सिफारिश की है तो मुझे उम्मीद है अब सारी वो जरूर पढ़ेंगे।
0: हम भी यही चाहते हैं कि वो जरूर पढ़ें, और क्योंकि हमारे फैमिली में ही जब क्रिटिक होता है तो हमारे कार्य और अच्छे और निपुण हो जाते हैं।
1: तो प्यार से ही जैसे आपने बात की
0: जी जी,
1: तो मैं आदरणीय स्वर्गीय श्री लक्ष्मी सागर जी की जब मृत्यु हुई 2015 में, तो उस पर एक गीत लिखा, वो मैं आप सुनाऊंगा।
0: हाँ।
1: ये तरन्नुम में है,
0: प्लीज।
1: है फिल्मी धुन के ऊपर है, लेकिन बिल्कुल शब्द सारे मेरे हैं
0: जी।
1: हम

गे जब कभी भी करेंगे बात सागर की संग संग मन

वो लॉन टेनिस खेलने के शौकीन थे, रोटरी के बड़े गवर्नर थे, तो मैं उसी पे आ रहा हूं आगे। वो लॉन टेनिस वे सुबह की सैरें वहां की थी जो सारी चर्चाएं, वो लॉन टेनिस वो सुबह की सैरें वहां की थी जो सारी चर्चाएं, उन क्षणों की याद आएगी जब ख्यालों में तुमको पाएंगे, हाँ हम तुम्हें यूं।

था जैसे कोई बच्चा सुरक्षित था, और बनाया था जो प्रिंसिपल मुझे वे एहसान

0: रोटरी में आए बिना चैन ना था। वो रोटरी क्लब में बड़े सक्रिय सदस्य थे, उसका गवर्नर भी रहे।
1: जी जी
0: रोटरी

यूं लक्ष्मी नाम पर सदा खरे उतरे, सागर समान दिल सदा बड़ा रखा। लक्ष्मी नाम पर सदा खरे उतरे, सागर समान दिल सदा बड़ा रखा। सबके दिलों को तुमने जीत लिया, सबके दुख दर्द

0: संग संग मन को ही मनाएंगे। हाँ हम तुम्हें यूं भुला न पाएंगे, हो हम तुम्हें यूं।
1: बहुत खूब डॉक्टर साहब, बहुत खूब। आपने
0: भावुक
1: अंबाला,
0: हो गया मैं।
1: आपने अंबाला की जो धरोहर है उसको बचा के रखा है, नोट करके रखा है। हमारे अंबाला के एक इंडस्ट्रियलिस्ट लक्ष्मी सागर जी को रेडियो वितस्ता परिवार की ओर से भी हम पुष्प अर्पित करते हैं, और आपके जो शब्द है उनके लिए उनका भी सम्मान करते हैं। डॉक्टर साहब, हम थोड़ा सा माहौल को चेंज करते हैं, एक और गाना हम आपकी पसंद के लेना चाहेंगे जो हम आपको भी सुनाना चाहेंगे और श्रोताओं को भी। तो कौन सा गाना होगा जो अगला आपको मन पसंद हो?
0: जो मैंने अभी लक्ष्मी सागर जी के ऊपर गीत सुनाया वो थोड़ा गमगीन था
1: जी, जी
0: ट्रिब्यूट था उनको
1: जी।
0: तो मैं माहौल को बदलने के लिए एक बड़ा तड़कता भड़कता गाना जिसमें जोश है वो सुनना चाहूंगा
1: जी, जी।
0: और श्रोताओं को भी सुनाना चाहेंगे। गाइड फिल्म का गाना है, आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है।

0: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, अंबाला का अपना रेडियो। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम काव्य गोष्ठी और आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर विनय कुमार मल्होत्रा जी के साथ। डॉक्टर साहब, कोई ऐसी कविता जो आपने परिवार को समर्पित की हो या श्रोताओं को, कोई और कविता सुनाना चाहेंगे?
1: कविता का शीर्षक है पढ़ाई ही काम आनी
0: जी,
1: पंजाबी में है। इसमें यह बताया गया है कि पढ़ाई लिखाई स्टडी ही लाइफ में काम आएगी
0: जी।
1: अज दा नौजवान बड़ा ही परेशान, दुनिया नू देख ओ ता हैरान, वद्दी होई आबादी तो ओ बेचैन, किधरों नहीं आंदा उन्नू चैन। बारहवीं पास करके कुछ भी नहीं सुझदा, अगे की करिए कुछ भी नहीं दिसदा, केड़ी पढ़ाई करिए कोई भी नहीं दसदा, प्राइवेट कालजां च ओ जा फसदा। बीए करिए बीकॉम करिए या करिए बीएससी, बीएड करिए एमए करिए या करिए एमएससी, बी कर इंजीनियर वेले पे फिर दे, बीएड कर टीचर मारे मारे फिर दे, पंज पंज हजार दी नौकरी पे कर दे, चारों पासे दिक्कतां दे नाल पे जूझ दे। चलो किसे कॉलेज दाखला ही ले लईए, चार पांच साल कुछ ऐश ता कर लईए, कॉलेज विच आके ता मौजा ही मौजा ने, किसे किस्म दिया ना कोई रोका ना टोका है। कॉलेज आके बंक मारने सिख गए, क्लासा कीवें मिस करनी है ए भी सिख गए, नकल कीवें मारनी है ते पर्ची कीवें बनानी है, कुड़ी कीवें पटानी है ते पिक्चर कीवें दिखानी है, दवा कित्थों लेनी है ते दारू कित्थों पीनी है, जवानी साडे उत्ते कोई रोज रोज चढ़नी है।
0: सही सही।
1: मोबाइल महंगे तो महंगा लेना है, एंड्रॉयड या आईफोन तो कट नहीं लेना है, मोटरसाइकिल भी लख रुपए वाली चलानी है, पर सिर ते हेलमेट नहीं जे पानी है, अखां उत्ते रे बैंदी गोगल चढ़ानी है, पर थल्ले फटी हुई जीन्स ही पानी है। एंड में सीख दे रहा हूं लेसन, शिक्षा। कुछ बहुत बिगड़ गए थे, कुछ बहुत पढ़ गए, कॉलेज में आके कुछ बच्चे बिगड़ते भी हैं, ज्यादातर पढ़ जाते हैं। कुछ बहुत बिगड़ गए थे कुछ बहुत पढ़ गए, कुछ अगे निकल गए थे बाकी पीछे रह गए, कुछ अफसर बन के राज पे कर दे, कुछ फेल होके सब्जी पे भेज दे, आ जाओ किलो ही किलो किलो ही किलो किलो ही किलो।
0: बहुत खूब सर, बहुत खूब।
1: गई जवानी मुड़ नहीं आनी, कीती होई पढ़ाई ही काम आनी, गई जवानी मुड़ नहीं आनी, कीती होई पढ़ाई ही काम आनी। मैंने अपने परिवार के हर सदस्य पर कविता लिखी है, अपने पिताजी प्रोफेसर वीर सेन जी के ऊपर, अपनी माता स्वर्णा जी के ऊपर, अपनी पत्नी पर तो 12 मैंने अभी आपको बताया लिखी हैं, पूरी एक दर्जन, क्योंकि पत्नी से डरना पड़ता है, उससे एक दो से थोड़ी काम चलेगा, उनको तो 12 ही लिखनी पड़ेंगे। फिर उसके बाद अपनी डॉटर्स के ऊपर कविताएं लिखी
0: जी,
1: फिर दामाद के ऊपर भी कविता लिखी, यानी कि परिवार के हर सदस्य पर वो हर कविता उनकी खूबियों को दर्शाती है, करेक्टर को बताती है
0: जी।
1: तो लेकिन यहां मैं अब आपको सुनाऊंगा,
0: आपकी बात रोकता हूं सर, रेडियो वितस्ता परिवार भी अब आपका एक परिवार है, आने वाले दिनों में हम चाहेंगे कि रेडियो वितस्ता परिवार पर भी एक कविता हो, कृपया आप अपनी बात पूरी करें।
1: बिल्कुल, आपने बड़ा अच्छा आइडिया दे दिया, इस पर भी एक कविता बन गई समझो, और अगली बार सुनाएंगे। तो मेरे अपने परिवार के अलावा मेरा अंबाले में एक रोटरी परिवार भी है, मैं 1974 से जब मैं अभी एमए में पढ़ रहा था तब से रोटरी क्लब से जुड़ा हुआ हूँ, पहले मैं उसके यूथ विंग रोट्रैक्ट में था, अब रोटरी में हूँ। उसी के अंदर एक सेवा चल रही है, मुफ्त सेवा है वो, कैंसर रोगियों के जो लाइलाज है उनके घर पे जाकर के देख रेख करना
0: जी।
1: और उसके लिए कोई फीस नहीं, जो दवाइयां भी वहां मुफ्त दी जाती हैं, ग्लूकोज चढ़ाना है वो भी मुफ्त। तो इस सेवा की देख रेख हम 2-3 लोग कर रहे हैं, सुभाष बंसल जी, अजय गुप्ता जी और मैं
0: जी।
1: और जो रोगियों को मुफ्त राशन भी बांटते हैं
0: जी,
1: जो निर्धन रोगी है। तो स्नेह स्पर्श जो ये सेवा है, इस पर भी मैंने कुछ कविताएं लिखी हैं, गीत लिखी हैं, वो आपको सुनाता हूं। पहले थोड़ा सा सुनाऊंगा एक गीत, फिर उसके बाद एक पंजाबी में सुनाऊंगा इसी के ऊपर, स्नेह स्पर्श के ऊपर
0: जी।
1: स्नेह स्पर्श तूने कैंसर रोगियों को संवारा, तूने कैंसर रोगियों को सुधारा, कृपा करी तूने उन पर खुश खुश जिए तेरे संग, खुश खुश जिए तेरे संग। स्नेह स्पर्श, स्नेह स्पर्श लाइलाज रोगियों की पीड़ा हरी, उनके घर जाकर मुफ्त से

स्नेहस्पर्श स्नेहस्पर्श असहाय असमर्थ के तू काम आई, असहाय असमर्थ के तू काम आई, महीने का राशन उनके घर दे आई, स्कूली बच्चों की फीस भी पहुंचाई।

0: Sparish. स्नेह
1: बहुत खूब सर।
0: इसी पर स्नेह स्पर्श पर एक आपने बुल्ले शाह का नाम सुना है पंजाबी
1: जी जी,
0: उसी की शैली उसी की है और पंजाबी में, अब मैं पंजाबी पे आ रहा हूँ
1: जी जी जी,
0: उसी का स्टाइल है लेकिन शब्द सारे बोल मेरे अपने हैं
1: जी।
0: बड़ी तरह दे रोग ने हुंदे बीमारियां, बड़ी तरह दे रोग ने हुंदे पर कैंसर वांग ना इलाज नहीं हुंदे, सेहतमंद सुकदे देखे ताकतवर भी चुकदे देखे, खजाने खाली हुंदे देखे अमीर फकीर हुंदे देखे। इसके इलाज में
1: सच्चाई है, सच्चाई।
0: अमीर भी फकीर हो जाते हैं, खजाने खाली हुंदे देखे अमीर फकीर हुंदे देखे, कैंसर दा कष्ट कोई ना जाने पीड़ा विच मरदा रोगी जाने, सब जातां सब धर्मां दे लोग इस दी पीड़ा विच मरदे देखे, लोकी कहंदे इलाज नहीं कोई फेर भी इलाज हुंदे देखे, रब दी रहमत नाल ओ बंदे रोगी चलदे फिरदे देखे, डॉक्टर कहंदे हुन नहीं जीना डॉक्टर कहंदे हुन नहीं जीना फेर भी रोगी जींदे देखे, जिना रोगियां नू सब ने छड़िया स्नेह स्पर्श ने उना नू गले लगाया, जिना रोगियां नू सब ने छड़िया स्नेह स्पर्श ने उना नू गले लगाया, लोकी सब कुछ हुंदिया रोंदे जांदे, जब लोग ऊपर जाते हैं तो रोते ही जाते हैं, लोकी सब कुछ हुंदिया रोंदे जांदे पर स्नेह स्पर्श नाल हसदे जांदे, पर स्नेह स्पर्श नाल हसदे जांदे।
1: बहुत खूब सर, बहुत खूब। स्नेह स्पर्श के साथ आप लोग जुड़े हैं और सुभाष बंसल जी को हम कैसे बोल सकते हैं, बहुत ही अच्छा कार्य, बहुत ही अच्छा काम वो अंबाला में करते हैं। मैं ये कहता हूँ कि उन्होंने इस दर्द को बहुत नजदीक से देखा है और सुभाष जी ने और रवि बंसल जी ने, उन सब ने मिलकर अंबाला के लोगों के लिए रोटरी में अपनी ओर से सुविधाएं देने का जो काम किया है वो सराहनीय है। सर आगे और बढ़ते हैं, हमारे इस कार्यक्रम का अब समय समाप्त होने जा रहा है, पर उससे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आप बहुआयामी कार्य करते हैं, जैसे पुस्तकों के हवाले से आपने अंबाला लिटरेरी कॉन्क्लेव की शुरुआत की जिसमें कई कवि तथा लेखकों की पुस्तकों का विमोचन भी हुआ, क्या ऐसा कोई आयोजन आगे होने वाला है?
0: हाँ, हमारा जो प्रोफेसर वीर सेन विनय मल्होत्रा ट्रस्ट रजिस्टर्ड ट्रस्ट है, सरकार में भी और इनकम टैक्स में भी, और ये 2015 में बना था और ये समय समय पर विभिन्न चैरिटेबल काम तो करता ही है, जैसे रोगियों की मदद करना इलाज के लिए, स्कूलों कॉलेजों में जो मेधावी तथा जरूरतमंद छात्र हैं उनको वजीफे देना, उसके अलावा ये सेमिनार आयोजित करता है, काव्य गोष्ठियां आयोजित करता है, भजन संध्या आयोजित करता है
1: जी।
0: इस तरह और जैसे थिएटर्स को इनकरेज करता है, थिएटर ग्रुप्स की हेल्प करता है, तो इस तरह के कार्य करता है हमारा ट्रस्ट, और इसी ने अंबाला में एक नई शुरुआत की लिटरेरी कंक्लेव यानी कि आयोजित करने की, जिसमें अंबाला तथा इसके आसपास के लेखकों को इकट्ठा किया जाता है, उनकी नई पुस्तकों के बारे में चर्चा की जाती है, उनका मूल्यांकन और समीक्षा की जाती है, और लेखकों को एक आपस में मंच प्रदान किया जाता है कि आपस में मिल सकें, एक दूसरे किताबों को, एक दूसरे की किताबों को, नई किताबों को जान सकें। तो अब हम चौथा कंक्लेव करने जा रहे हैं अगले महीने 17 दिसंबर को
1: अंबाला में ही।
0: हाँ जी
1: जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर इसके लिए, क्योंकि बहुत सारे जो नवोदित लेखक है उनको भी एक प्रोत्साहन मिलता है और उनको भी एक जगह मिल जाती है, उनको भी एक स्थान मिल जाता है। डॉक्टर साहब आपने बहुत सारे विषयों पर लिखा, जैसे आपने हमें हिंदी में अपनी कविताएं सुनाई, हरियाणवी में सुनाई और पंजाबी में भी सुनाई, सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए हमारा अंबाला है जिसके लिए ये FM स्टेशन भी भारत सरकार ने दिया है ताकि अंबाला को हम विश्व पटल पर रख सकें, क्या आपने अंबाला को भी अपने शब्दों में पिरोया है?
0: हाँ बिल्कुल पिरोया है, बचपन से अंबाला में रह रहे हैं तो अंबाला और इसकी समस्याएं, इसकी खूबियां, इसकी विशेषताएं भी मेरी कविता का विषय बनी हैं। कुछ कविताओं में अंबाला की वो क्रिटिकल हैं, इसकी जो समस्याएं बताई गई हैं, और कुछ में, कईयों में इसकी तारीफ भी की गई है, और बकायदा मेरी एक पुस्तक है मेरा अंबाला जो इसमें सारी कविताएं अंबाला के ऊपर हैं, तो उन्हीं में से, उसी में से मैं एक कविता आपको जो सुना रहा हूं।
1: प्लीज सर।
0: हम आए फिर अंबाला।

अंबाला है अच्छा सारे जहां से, हम आए फिर अंबाला खुश कर रहा है सुंदर यहां का सुभाष पार्क, खुश कर रहा है सुंदर यहाँ का सुभाष पार्क, ये झील में बोटिंग चारों तरफ है लाइटिंग, जवानों की यहाँ जिम बच्चों की स्केटिंग, ये तो वही जगह है अच्छी सारे जहां से, हम आए सुभाष पार्क। मेरे इस अंबाले में ये विकास कैसा हो रहा।

0: है अच्छी सारे जहां से हम आए फिर अंबाले। मैंने पूरी नहीं सुनाई क्योंकि समय का अभाव है।
1: जी जी डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से आपने ये शब्द कहे, ये श्रेय अंबाला की तरक्की के लिए किसको जाता है? क्या आपने उनके लिए भी कोई कविता लिखी है?
0: हाँ, मैंने श्री अनिल विज जी के लिए बहुत कविताएं और गीत लिखे हैं। एक थोड़ा सा उनके, ये पंजाबी में है क्योंकि तो वो भी पंजाबी हैं और बड़ा पंजाबी को पसंद करते हैं, तो उसके ऊपर एक कविता है अनिल विज जी के ऊपर। पूरी नहीं सुनाऊंगा, एक दो स्टांजा ही। एवी कर दे ओ वी कर दे, एवी लिया दे ओ वी बना दे, एवी कर दे ओ वी कर दे, एवी लिया दे ओ वी बना दे, नित नई मंग तेरे अगे रखी रख दे, नित नई मंग तेरे अगे रखी रख दे, अंबाला वासी बाबे नू कमलाई रख दे, अंबाला वासी बाबे नू कमलाई रख दे, एवी कर दे ओ वी कर दे, एवी लिया दे ओ वी बना दे, हुन विकास करा दे, हुन विकास करा दे बाबे शोर मचाई रख दे, हुन विकास करा दे बाबे शोर मचाई रख दे, अंबाला वासी बाबे नू कमलाई रख दे, पिंडा वाले कहंदे नवी सड़क बनानी है, शहरा वाले आंदे नहरी पानी लियाना है, पिंडा वाले कहंदे नवी सड़क बनानी है, शहरा वाले आंदे नहरी पानी लियाना है, बाबे तैनू नवे सवाल पाई रख दे, बाबे तैनू नवे सवाल पाई रख दे, अंबाला वासी बाबे नू आरे लाई रख दे, कोई कहंदा दे दे बाबा सहारा नौकरी दा, कोई कहंदा दे दे बाबा सहारा नौकरी दा, कोई कहंदा हस्पताल खोल गरीबां दा, हर वेले नवी है फरमैश रख दे, हर वेले नवी है फरमैश रख दे, अंबाला वासी बाबे नू आरे लाई रख दे, अंबाला वासी बाबे नू कमलाई रख दे, एवी कर दे ओ वी कर दे, एवी लिया दे ओ वी बना दे, नित नई मंग ओदे अगे रखी रख दे, नित नई मंग ओदे अगे रखी रख दे, अंबाला वासी बाबे नू कमलाई रख दे, अंबाला वासी बाबे नू कमलाई रख दे।
1: डॉक्टर साहब, आपने तो पूरा जो अंबाला है उसको आज आपने इस कार्यक्रम के माध्यम से, अपनी कविताओं के माध्यम से सभी श्रोताओं के सामने रख दिया। मुझे बहुत खुशी है कि FM 90.0 मेगाहर्ट्ज इसका एक हिस्सा बन गया है। जिन लोगों ने इन शब्दों को नहीं सुना है, आज हम कोशिश करेंगे कि इस कार्यक्रम को बार बार प्रसारित कर हर व्यक्ति तक पहुंचाएं। इस कार्यक्रम का समय पहले ही समाप्त हो चुका है। अंत में इजाजत लेने से पहले मैं चाहूंगा कि नवोदित कवियों के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं और क्या आपका जो ट्रस्ट है उनके किसी काम आ सकता है?
0: अंबाला में कई नवोदित कवि हैं और वितस्ता रेडियो और आप उनको अपने स्टूडियो में बुलाते हैं, जैसे ललित शर्मा लाड्डी को आपने बुलाया
1: जी,
0: था
1: जी।
0: एक शाहबाद के कुलवंत चावला जी की बेटी जो फॉरेन में सेटल है, मैं उसका नाम नहीं याद आ रहा।
1: रिदम,
0: उसको आपने, मैंने उनकी सारों की इंटरव्यू कई बार सुनी है
1: जी।
0: तो आप विभिन्न कवियों को यहाँ प्रोत्साहन देते हो, बुलाते हो, तो मेरा यही संदेश है अंबाले के युवाओं को कि वो लिखने पढ़ने की आदत रखें, सिर्फ मोबाइल में ही ना उलझे रहें, लिखने पढ़ने की आदत बनाए रखें और कभी भी नए नए विषयों को लें, सामाजिक मुद्दों को उठाएं और अपनी रचनाओं को आपके माध्यम से अंबाला वासियों के आगे रखें
1: जी।
0: यही मैं कामना करता हूं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपका बहुत बहुत हम शुक्रगुजार हैं। आप स्टूडियो में एक बार फिर आए, आपका आभार, आपका हमेशा हम इंतजार करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि अगले प्रोग्राम में आपके साथ फिर भेंट करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ श्रोताओं, मैं इजाजत लेना चाहूंगा। मैं भारत सोपोरी आपसे इजाजत लेता हूं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।
0: धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद।
2: आप सुन रहे हैं अंबाला कैंट का पहला कम्युनिटी रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर, रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का। 90.
3: यू आर लिसनिंग 90.0 FM रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, अ कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।

आप सुन रहे हैं अंबाला कैंट का पहला कम्युनिटी रेडियो एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर, रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

0: You are listening FM 90.0 megahertz radio with Asta, hum safar zindagi ka. Ambala Kent's first community radio, licensed by Ministry of Information and Broadcasting, Government of India.
1: ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

सुनिए और सुनाइए रेडियो विविधता, सुनना भूल ना जाइए। आपका रेडियो आपकी अपनी आवाज, रेडियो विविधता 90.0 FM पर हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो विविधता, आपका अपना रेडियो आपकी आवाज दिल से।

आइए कुछ अच्छा सुनते हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता पर। हम सफर जिंदगी का अम्बाला का अपना रेडियो।

सुने अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

यू आर एंजॉयिंग 90.0 एफएम रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का एक कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।

0: लिप कुमार, अरे कम्बक गाड़ी को भी यही पंक्चर होना था। हम पहुँचे तो सारी आफत चल गई बाबा,
1: इन हाथों से सबकी गाड़ी चल रही है बाबा।
2: वाह, अरे वाह।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विविधता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

0: ही दालच में एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अंबाला कैंट से हमारी प्रसारण, सुनते रहिए दिल से।
2: तुसी सुन रहे हो अंबाला दा अपना रेडियो, रेडियो वित्तस्ता 90.0 मेगा हर्ट्ज़ ते। सुनते रहो अपने

0: छोड़ो हाथ छोड़ो,
1: देखो दिल न तोड़ो,
0: और छोड़ो हाथ छोड़ो,
1: छोड़ दिया तो हाथ मलोगे समझे,
0: अज समझे।

0: हो रहना किसी के,
1: क्या करना है देखे?
0: अरे हो रहना किसी के,
1: हम रहे तो याद करोगे, समझे
0: समझे।

0: की दालच में एक है लता मंगेशकर, एक है रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अंबाला केंट से हमारे ये प्रसारण सुनते रहिए।

सुनिए और सुनाइए, रेडियो विविधता सुनना भूल ना जाइए। आपका रेडियो, आपकी अपनी आवाज, रेडियो विविधता 90.0 FM पर हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो विविधता, आपका अपना रेडियो, आपकी आवाज दिल से।

रेडियो वितस्ता FM 90 की ओर से सभी विज्ञापन दाताओं के लिए खुशखबरी। किसी भी त्योहार या स्पेशल ओकेजन पर विज्ञापन या शुभकामना संदेश देने पर वितस्ता रेडियो की ओर से दिया जा रहा भारी डिस्काउंट। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कॉल करिए 7056413010 पर।

आप सुन रहे हैं रेडियो विस्ता FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान, एपिसोड 19, वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वैच्छिक अवसर, वॉलंटियरिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर सीनियर सिटीजन। ये कार्यक्रम सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के प्रायोजन में कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन द्वारा निर्मित अटल वयो अभ्युदय योजना पर आधारित कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम को रिकॉर्ड, एडिट व निर्देशित किया भारत सोपोरी ने।

0: भरत भाई, घर पे हैं क्या?
1: हाँ, मैं अंदर हूँ। तुम कौन हो भाई, जो इतनी सुबह दरवाजा खटखटा रहे हो?
0: अरे भरत भाई, सारी जांच पड़ताल बाहर ही कर लोगे या दरवाजा भी खोलोगे?
1: अरे लक्ष्मी बेटा, ओ लक्ष्मी बेटा, सुनती हो? देखो तो कौन आया है, जरा दरवाजा तो खोल दो।
2: आई दुदू, एक मिनट रुको, मैं अभी दरवाजे के मेहमान को अंदर ले आई।
1: हाँ हाँ, कैसे हो शंकर भाई, और इतनी सुबह कैसे आना हुआ तुम्हारा?
0: लगता भरत तुम्हें ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। दूसरे साथियों को तो खूब जानकारियाँ देते हो और अपना ख्याल नहीं है।
1: अरे ऐसा क्या कर दिया मैंने शंकर भाई?
0: हाँ हाँ, अचंभे की बात तो ये है कि तुम्हें याद भी नहीं। अब तुम ही बताओ लक्ष्मी बेटी कि क्या समय हो रहा है? साहब को अभी सुबह लग रही है।
2: दादू, अपना चश्मा तो लगा लो आप ठीक से, तब तो पता चलेगा।
1: हाँ हाँ हाँ, अरे हाँ ठीक कहती हो बिटिया, मुझे तो घड़ी में 9 की जगह 6 दिखाई दे रहा था। मुझे लगा अभी सुबह के 6 बज रहे हैं।
0: क्या करोगे भाई, अब तो उम्र भी हो गई है ना, बिना चश्मे के काम कहाँ चलता है।
1: खैर ये छोड़ो, शंकर भाई तुम बताओ कैसे हो, कब घर आए हो रिटायर होके नौकरी से?
0: मैं तो ठीक हूँ भरत भाई, मुझे रिटायर हुए तो तकरीबन 8 साल हो गए हैं। अब घर पे ही रहता हूँ। तुम्हारे बारे में सुना तो सोचा चलो पहले अपने मित्र से मिलके आता हूँ।
1: अच्छा किया भाई तुमसे मिलकर, इससे तो मेरी उम्र लगता है 1-2 दिन और बढ़ गई।
2: दादू आज कुछ खास भी है, आपको याद है या वो भी भूल गए हैं?
1: आज आज क्या खास है बेटा, मुझे तो याद नहीं आ रहा है।
2: क्या दादू, अपने पुराने दोस्त से मिलने की खुशी में सब भूल गए?
1: अरे हाँ हाँ याद आया, अरे आज तो हमें रेडियो स्टूडियो भी चलना है ना बेटा। आज हमारे कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान का प्रसारण भी तो है।
2: वही तो कह रही हूँ दादू, सब हमारा इंतजार कर रहे होंगे, और अपने दोस्तों और श्रोताओं को इंतजार करवाना बिल्कुल अच्छी बात नहीं।
1: हाँ बेटा बिल्कुल ठीक कहती हो, चल मैं तैयार हो जाऊंगा अभी फटाफट।

0: टेंशन की कोई बात नहीं।
1: ठीक है दादू, आप रेडी हो जाओ, मैं तब तक रेडी होके आती हूँ।
2: अच्छा भरत, सुनो यार, मैंने तुम्हारे बारे में पूरे गांव में सुन रखा है कि तुम बुजुर्गों के जीवन को सुलभ, आसान और उनके जीवन जीने की गुणवत्ता को सुधारने के लिए कई योजनाओं के बारे में जानकारी देते हो।
0: हाँ शंकर, उसका नाम है अटल वयो अभ्युदय योजना, जिसके तहत बुजुर्गों को उनके जीवन जीने की गुणवत्ता को सुधारने के लिए कई प्रयास किए जाते हैं।
2: अच्छा ये बात है, पर सुनो यार, बाकी सब तो ठीक है, मगर मैं तो रिटायर हो गया हूँ, लेकिन मैं घर में बैठे बैठे बोर हो जाता हूँ। कोई काम हम जैसे बुजुर्गों के लिए हो तो बताओ ना।
0: अच्छा शंकर, जरूर इस बारे में भी अपनी पोती लक्ष्मी से आज के एपिसोड में पूछूंगा। तू चिंता मत कर, लक्ष्मी सब जानकारी रखती है, मैं इस बारे में आज कार्यक्रम में जरूर पूछूंगा। इसलिए तुम आज का कार्यक्रम जरूर सुनना और साथ ही अपने दोस्तों को भी सुनाना।
2: ठीक है भरत भाई, फिर तो मैं अब चलता हूँ।
0: अरे इतनी जल्दी कहाँ चल दिए, ना आते देरी ना जाते देरी, किधर फुर होने की तैयारी में हो?
2: अरे भरत भाई, तुम्हारे कार्यक्रम सुनने का इंतजाम तो करना पड़ेगा ना, और साथ ही अपने दोस्तों को भी बताना पड़ेगा। तेरा क्या है, तू तो लक्ष्मी पिटिया के साथ बैठेगा और फिर शुरू कर देगा, नमस्कार मैं हूँ भरत और बला बला, फिर दोनों हंसते हैं।
0: ठीक है शंकर भाई, मिलता हूँ मैं आपसे कार्यक्रम में, मैं भी तैयार हो लूं, वरना लक्ष्मी अभी आती ही होगी।
2: ठीक है भरत भाई, कार्यक्रम में इंतजार रहेगा।
3: सुनिए सुनिए सुनिए, आज हम जानेंगे इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर सीनियर सिटीजन IPSRC के बारे में। इस योजना के तहत सहायता कार्य करने के लिए एजेंसियां प्रदान की जाएंगी, जैसे राज्य, केंद्र शासित प्रदेश सरकारें, पंचायती राज संस्थान, स्थानीय निकाय और पात्र गैर सरकारी स्वैच्छिक संस्थान, जिससे हमारे बुजुर्गों के जीवन की गुणवत्ता में आएगा सुधार। इसके तहत वृद्ध जनों को आश्रय, भोजन, चिकित्सा देखभाल और एंटरटेनमेंट की सुविधा भी प्रदान की जाएगी, साथ ही उन्हें सक्रिय और उत्पादक बुढ़ापे के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, जिससे उनका जीवन मूल्य और बढ़े। जी हाँ, वरिष्ठ नागरिकों के घरों, महिलाओं के लिए वरिष्ठ नागरिकों के लिए घरों का रखरखाव, जिसमें सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत आने वाले घर भी शामिल हैं, जहाँ उन्हें निःशुल्क भोजन, आश्रय, देखभाल, मनोरंजन जैसी सुविधाएं दी जाएंगी। तो अब वरिष्ठ नागरिकों को मिला उनका सम्मान, जीवन होगा उनका आसान। हमारे बुजुर्ग हमारा स्वाभिमान, CRA द्वारा निर्मित, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा जनहित में जारी।
0: किधर है मेरी लाडली पोती, चलना नहीं है क्या बिटिया?
1: एक सेकंड दादू, बस अभी आई।
0: एक सेकंड तो हो गया, तू किधर रह गई?
1: आज तो आप मुझसे भी पहले तैयार हो गए दादू, मगर फिर आज आप धूप से बचने के लिए टोपी चश्मा लगाना भूल गए।
0: अरे हाँ बिटिया, ठीक याद दिलाया तूने, रुक फटाफट पहन लेता हूँ।
1: अब ठीक है दादू एकदम, क्योंकि बाहर अच्छी खासी गर्मी पड़ने लग गई है। चलो अब हम दोनों चलते हैं अपने रेडियो के स्टूडियो।
0: हाँ बेटा चलो।
3: बुढ़ापा अभिशाप नहीं, बुढ़ापा बनेगा उत्सव जिंदगी का। अटल वयो अभ्युदय योजना बनाए बुजुर्गों की जिंदगी को आसान, लौटाए उनका खोया हुआ स्वाभिमान। कहा जाता है बुढ़ापा अपने आप में एक रोग है, उम्र बढ़ने के साथ हमारे बुजुर्गों को होती है कई तरह की शारीरिक समस्याएं। ऐसे में गरीब असहाय वरिष्ठ नागरिकों के पोषण के लिए सरकार ने उठाए हैं कदम। अटल वयो अभ्युदय योजना दिलाती है बुजुर्गों को सही पोषक भोजन। लगभग 50,000 बुजुर्गों को लाभ देने के लिए 39.6 करोड़ बजट में आवंटित किए गए हैं, जिससे होगा हमारे वरिष्ठ जनों का अभ्युदय। साथ ही सहारा बनी वरिष्ठ जनों का राष्ट्रीय वयोश्री योजना, जिसमें गरीबी रेखा के नीचे के हमारे सम्माननीय वरिष्ठों को मिलेंगे सहायक उपकरण और जीवन सहायक यंत्र, जैसे व्हीलचेयर, हियरिंग हेड, वॉकर, जिससे खिल उठी हमारे बड़ों की खोई मुस्कान, क्योंकि हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। CRA द्वारा निर्मित, सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: आप सुन रहे हैं आपका अपना एकमात्र सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर, रेडियो वितस्ता। मैं हूं आपकी सबकी प्यारी और अपने दादू की दुलारी पोती लक्ष्मी,
0: और मैं वही हूं जिसकी आवाज ने बना ली है आपके दिल में पहचान और जिसे आप सब ने लिया है अपना मान, आपका अपना भारत दद्दो।
1: और हम दोनों स्वागत करते हैं आपका आपके अपने विशेष कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान में।
0: दोस्तों, ये कार्यक्रम खास हमारे वृद्ध जनों के सम्मान से जुड़ा है। इस कार्यक्रम में हम हमारे बुजुर्गों के लिए चलाई जा रही विशेष कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारियां साझा करते हैं और उससे लाभान्वित होने के तरीके पर विस्तार से चर्चा करते हैं।
1: ये विशेष भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के नेतृत्व में और सामुदायिक रेडियो संगठन की देखरेख में हम आपके बीच लेकर हाजिर होते हैं।
0: सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार का एक मंत्रालय है जो समाज में सामाजिक न्याय और सामाजिक कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। साथ ही मंत्रालय दिव्यांगजन, पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग, बुजुर्ग और अन्य विशेष समूहों के लिए समय समय पर नई नीतियां बनाकर और नए कार्यक्रमों को संचालित करके सामाजिक न्याय को बढ़ावा देता है और संकल्पित रहता है। लक्ष्मी बेटा, वो शंकर मेरा दोस्त आया था ना आज, वो पूछ रहा था कि क्या हम बुजुर्गों के लिए रिटायरमेंट के बाद कोई काम करने की व्यवस्था है क्या इस योजना के अंदर।
1: क्या बात है दादू, बहुत सही प्रश्न किया उन्होंने, और मैं तो कहती हूँ कि आज के एपिसोड के विषय भी यही रख लेते हैं। अटल वयो योजना के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वैच्छिक अवसर।
0: अच्छा, मगर इसका मतलब क्या है बिटिया, वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वैच्छिक अवसर? मुझे तो ये कुछ भी समझ नहीं आ रहा है
1: दादू। अटल वयो अभ्योदय योजना के बारे में आप जानते हो ना, तो भारत सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण और उनके जीवन को अधिक सक्रिय, उपयोगी और सम्मानजनक बनाने के लिए शुरू की गई एक महत्वपूर्ण पहल है। इसी योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों को उनके ज्ञान और अनुभव का उपयोग समाज की सेवा के लिए करने का अवसर मिलता है। ये योजना वरिष्ठ नागरिकों को स्वेच्छा सेवा के माध्यम से समाज में योगदान देने का मंच देती है और उन्हें मानसिक, शारीरिक और सामाजिक रूप से सक्रिय बनाए रखने में मदद करती है।
0: अच्छा, ऐसा है, मगर स्वेच्छा सेवा के अंतर्गत आता क्या है बेटा, कुछ इसके बारे में तो बताओ।
1: स्वेच्छा सेवा के अंतर्गत कई कार्य आते हैं, जैसे मान लीजिए दादू, शिक्षा और मार्गदर्शन में देखें तो इसमें हमारे बुजुर्ग बच्चों और युवाओं को ट्यूशन दे सकते हैं, या उनकी शिक्षा में सहायता और सामाजिक और नैतिक मूल्यों पर आधारित कार्यशालाओं का संचालन भी कर सकते हैं। इसके साथ ही करियर गाइड के रूप में वरिष्ठ लोग अपने कार्यक्षेत्र के अनुभव से युवाओं को करियर गाइडेंस दे सकते हैं। साथ ही कंप्यूटर, भाषा, लेखन या किसी अन्य कौशल में युवाओं को प्रशिक्षित कर सकते हैं।
0: अरे, ये तो बड़ी अच्छी बात बताई तुमने, लेकिन ये कार्य तो सब नहीं कर पाएंगे ना बेटा, फिर क्या होगा?
1: अरे दादू, तो चिंता क्यों करते हो, इनके लिए हमारी भारत सरकार ने डिजिटल इंडिया मिशन के तहत वरिष्ठ नागरिकों को डिजिटल कौशल सिखाने के लिए विशेष पहल की है।
0: अच्छा बेटा, इस डिजिटल मिशन में होता क्या है?
1: इसमें डिजिटल साक्षरता प्राप्त वरिष्ठ नागरिक समाज के अन्य बुजुर्गों और युवाओं को डिजिटल तकनीकों का उपयोग सिखा सकते हैं। इस मिशन के तहत ऑनलाइन सेवाओं और ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म पर काम करने के लिए वरिष्ठ नागरिकों को प्रशिक्षित किया जाता है। जिससे वो डिजिटल दुनिया के प्रयोग का प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं और स्वयं आत्मनिर्भर बन जाते हैं। समझे दादू?
0: अरे वाह बेटा, क्या बात है, ये तो बड़े काम की चीज बताई तुमने हम बुजुर्गों के लिए। जीते रहो बेटा, हमेशा खुश रहो।
1: अरे इतना ही नहीं दादू, हमारी सरकार तो इससे भी एक कदम आगे है। हमारी भारत सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के मुद्दों पर चर्चा करने और उनके लिए नई नीतियों को लागू करने के लिए एक राष्ट्रीय परिषद का गठन भी किया है, जो वरिष्ठ नागरिकों को समाज की सेवा करने के लिए नए अवसर प्रदान करती है, साथ ही उनकी जरूरतों और सुझावों को सरकारी योजनाओं में शामिल करने का कार्य भी करती है।
0: अच्छा, हमारी सरकार तो काफी आगे का सोच चुकी है बिटिया।
1: हमारी सरकार ने तो यहाँ तक वरिष्ठ नागरिकों को अपनी कला, संस्कृति और परंपराओं को संरक्षित करने और नई पीढ़ी के साथ साझा करने के लिए प्रोत्साहित भी कर रही है, जिसमें बुजुर्ग सांस्कृतिक कार्यक्रमों और कार्यशालाओं का आयोजन कर सकते हैं, जिसके माध्यम से वे अपनी पारंपरिक कला और शिल्प को बढ़ावा दे सकते हैं।
0: अब समझो, लेकिन बिटिया वो एक एक दिन अपने वकील बाबू किसी होटल की बात कर रहे थे।
1: अच्छा, किस होटल की दादू, क्या कह रहे थे वो?
0: कुछ कह रहे थे बेटा कि कोई होटल है सरकार का, जिस पर जाकर रजिस्ट्रेशन करने से भी, फॉर्म भरने से नौकरी मिलती है बुजुर्गों को। ठीक से याद नहीं आ रहा है बेटा।
1: दादू वो कोई होटल नहीं, पोर्टल की बात कर रहे होंगे। समझे, पोर्टल जिसे हम आधिकारिक वेबसाइट कहते हैं।
0: अब याद आया, अरे वो कोई बटन पोर्टल की बात कर रहे थे ना बेटा।
1: नहीं दादू, वो बटन नहीं, सक्षम पोर्टल है, उसे हम सक्षम पोर्टल कहते हैं दादू।
0: अच्छा, सक्षम पोर्टल है। श्रोताओ आप सब भी ध्यान से सुन लो, वो सक्षम पोर्टल है, लेकिन बिटिया सक्षम पोर्टल है क्या?
1: सक्षम पोर्टल भारत सरकार की एक पहल है, जिसका उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों और अनुभवी पेशेवरों को उनके कौशल और अनुभव के आधार पर रोजगार और स्वयं सेवा के अवसर प्रदान करना है। ये पोर्टल वरिष्ठ नागरिकों के सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम है, जहां वे अपनी योग्यता और रुचि के अनुसार कार्य पा सकते हैं, साथ ही ये समाज और अर्थव्यवस्था में उनकी भागीदारी को बढ़ावा देता है।
0: हाय रे, ये तो बिल्कुल वरदान है बेटा बुजुर्गों के लिए। ये बताओ कि ये क्या क्या सुविधाएं देता है हमारे बुजुर्गों को?
1: दादू ये सक्षम पोर्टल तो सचमुच वरदान जैसा ही है। ये बुजुर्गों को रोजगार के अवसर देता है, जिसमें वरिष्ठ नागरिकों को उनके कौशल और अनुभव के अनुसार फुल टाइम, पार्ट टाइम और फ्रीलांस नौकरियां उपलब्ध कराता है। विभिन्न क्षेत्रों में सलाहकार, प्रशिक्षक या प्रशासनिक भूमिका निभाने का मौका देता है। वरिष्ठ नागरिक गैर लाभकारी संगठनों, एनजीओस और सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों में भी अपनी सेवाएं प्रदान कर सकते हैं। शिक्षा, पर्यावरण, स्वास्थ्य और सामाजिक सुधार क्षेत्रों में भी ये पोर्टल योगदान का अवसर देता है। इतना ही नहीं, वरिष्ठ नागरिकों को डिजिटल साक्षरता और तकनीकी कौशल में प्रशिक्षित किया जाता है और ये उन्हें नई तकनीकों और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर काम करने में सक्षम बनाता है। पोर्टल पर वरिष्ठ नागरिकों को करियर मार्गदर्शन और परामर्श सेवाएं दी जाती है, साथ ही वे युवा पीढ़ी को भी करियर सलाह प्रदान कर सकते हैं। और भी बहुत कुछ है दादू।
0: ये तो बिल्कुल कमाल है, कमाल।

0: 12 वर्ष में होने वाले महाकुंभ मेले में जाने का मन किसका नहीं होता। और जीवन के इस पहर में महाकुंभ एक अवसर भी है आध्यात्म और भक्ति का। प्रयागराज में 13 से 26 जनवरी 2025 में होने वाले महाकुंभ में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय आप सभी बुजुर्गों के मेले में सम्मिलित होने को आसान और सुविधाजनक बना रहा है। इस अवसर पर मंत्रालय संचालित कर रहा है अपना एक सुविधा स्टॉल, जहां वृद्ध जनों को मिलेगी हर तरह की सुविधा और सहायक उपकरण, साथ ही उचित सलाह भी। और साथ ही सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय आप सीनियर सिटीजन से यात्रा के दौरान कुछ सावधानी बरतने की अपील भी कर रहा है। आप सभी ये यात्रा अकेले ना करें और किसी को अपने साथ जरूर लाएं। ज्यादा भीड़ भाड़ में सावधानी बरतें और भीड़ से बचें। घबराएं नहीं, धैर्य बनाए रखें। मेले के नियमों का पालन करें। किसी असुविधा में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के स्टॉल पर या नजदीकी सहायता अधिकारियों से संपर्क करें। महाकुंभ मेला आपके लिए सफल रहे और सुरक्षित भी, इसकी कामना के साथ सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय आपको महाकुंभ मेले की शुभकामनाएं दे रहा है। सीआरए द्वारा निर्मित और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
1: वाकई बेटा, ये तो जबरदस्त जिंदाबाद पोर्टल है हम बुजुर्गों के लिए। अब फटाफट ये बताओ कि इस पर रजिस्ट्रेशन कैसे करना है।
2: आसान है दुदु, बिल्कुल आसान है। पोर्टल पर पंजीकरण करने के लिए सबसे पहले सक्षम पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाइए। उसके बाद रजिस्टर या साइन अप विकल्प पर क्लिक करें। नाम, संपर्क जानकारी, आयु, शैक्षणिक योग्यता और अनुभव जैसी जानकारी भरें। आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें, जिसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, शैक्षणिक प्रमाण पत्र आदि शामिल है। साथ ही अपनी रुचि के क्षेत्र और उपलब्ध समय की जानकारी प्रदान करें। इसके बाद अपनी प्रोफाइल को पूरी तरह से भरें, जिसमें आपकी विशेषज्ञता, अनुभव और रुचि के क्षेत्र शामिल हो। उसके बाद नौकरी या स्वयं सेवा के लिए विशिष्ट क्षेत्र का चयन करें। पंजीकरण के बाद पोर्टल पर उपलब्ध नौकरियां और स्वयंसेवी अवसरों की सूची ब्राउज करें। अपनी रुचि और योग्यता के अनुसार आवेदन करें। वांछित नौकरी या स्वयंसेवी अवसर पर क्लिक करें, फिर अप्लाई बटन पर क्लिक करें और आवश्यक विवरण भरें। आवेदन जमा करें। आपका आवेदन पूर्ण हो गया है, अब प्रक्रिया का इंतजार करें।
1: अरे वाह, ये भी तो आसानी से हो जाएगा बेटा। लेकिन इसके लिए पात्र कौन लोग हैं?
2: न्यूनतम आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। कुछ विशेष क्षेत्रों के लिए रिटायर्ड पेशेवर आवेदन कर सकते हैं। कोई न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता नहीं है। अनुभव और कौशल के आधार पर यहाँ अवसर दिए जाते हैं। प्रशासन, शिक्षा, प्रबंधन, चिकित्सा, लेखा, तकनीकी या अन्य क्षेत्रों में अनुभव होने पर लाभ मिल जाता है। डिजिटल और कंप्यूटर कौशल वाले वरिष्ठ नागरिकों को प्राथमिकता भी दी जाती है। मानसिक और शारीरिक रूप से कार्य करने में सक्षम होना चाहिए। यही कुछ मामूली पात्रता की शर्तें हैं दादू।
1: वाह बेटा वाह, बहुत खूब, क्या बात बताई तूने। इसके बाद तो सभी सक्षम पोर्टल के बारे में पूरी तरह जागरूक हो गए होंगे।
2: तो आज का एपिसोड हम यहीं पे समाप्त करें दादू।
1: हाँ बेटा। दोस्तों, ये अटल अभ्युदय योजना सिर्फ एक पहल नहीं बल्कि एक मुहिम है, जो मेरे जैसे वृद्ध साथियों को उनके समृद्ध जीवन जीने में मददगार है। साथ ही हमारे बुजुर्ग किसी भी तरह की मदद या जानकारी के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन 1-4-5-6-7 लगा सकते हैं।
2: हमारे बुजुर्ग हमारी आन बान और शान है। अनुभव और ज्ञान की अद्भुत खदान है। इनसे ही हमारी पहचान है, इनसे ही हमारा स्वाभिमान है। और
3: हमारा भारत देश महान, हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान।
1: तो अब हमें दीजिए इजाजत, मुलाकात होगी आप सभी श्रोताओं से अगले एपिसोड में।
2: तब तक हंसते मुस्कुराते रहिए, खुशियों को फैलाते रहिए और अपना खूब सारा ख्याल रखिए। नमस्कार।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान एपिसोड 19 वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वैच्छिक अवसर वॉलंटियरिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर सीनियर सिटीजन। इस कार्यक्रम में लक्ष्मी के किरदार को आवाज दी आरजे किरनी ने, भरत दद्दू के किरदार को आवाज दी भारत सोपोरी ने, इसमें शंकर के किरदार को आवाज दी राहुल अलियान ने। ये कार्यक्रम सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के प्रायोजन में कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन द्वारा निर्मित अटल वयो अभ्युदय योजना पर आधारित कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम में सहयोग किया आरजे किरनी ने, रिकॉर्ड एडिट व निर्देशन भारत सोपोरी का। ये थी FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता की प्रस्तुति।

0: एक ही ताज महल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: ओ ढाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज पर। अम्बाला कैंट से हमारे प्रसारण सुनते रहिए

मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ। मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ। मरुस्थल की रेत हूँ मैं, सियाचिन का आसमान हूँ। मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ। मैं जून में जलती रेत में लेटे कहता हूँ, सर्दी आज कम है। दिसंबर की ठंड पी के कहता हूँ, गर्मी का मौसम है। मैं बर्फ में 9 दिन दफन रहकर जिंदा निकलता हूँ। सीने में अपनी सांस को टुकड़ों में भरता हूँ। -30 डिग्री में राइफल टांग के टहलने निकलता हूँ। आदमजात की औकात क्या जो मैं कुदरत से नहीं डरता। आदमजात की औकात क्या जो मैं कुदरत से नहीं डरता। मैं भारत का जवान हूँ, मैं दुश्मन से नहीं डरता। मेरी दिवाली में उजाले का ख्याल तक नहीं, मेरी होली में रिश्तों का गुलाल तक नहीं।

चांद हर ईद में तन्हाई का जाफा लाता है, मुझे राखी बांधने बस लिफाफा आता है। अपनी माँ के पैर छुए मुझे अरसा हो गया, अपनी माँ के पैर छुए मुझे अरसा हो गया, मेरा बाप मेरे इंतजार में बूढ़ा हो गया। मेरी बीवी सिंदूर लगा के भी लगती कवारी है, मैंने सहूलत का गला घोटा जरूरत नकारी है। हाँ मैं निर्दयी हूँ, मैं अपने उजड़ते घरों आंगन से नहीं डरता, मगर मैं डरता हूँ। हाँ मैं भी डर जाता हूँ, मैं डरता हूँ नफरत की आग से, मजहब के चोलों से, सियासत के सांप के कातिल सपोलों से। मैं हवा में फैली अफवाह से डर जाता हूँ, मैं सैलाब गुमराह से डर जाता हूँ। मुझे डर है मेरी सरजमी को अपने उजाड़ेंगे, खून की मोहर से खुद को संवारेंगे। मैं मजबूर हूँ, कमजोर हूँ, मैं खुद से लड़ नहीं सकता, अपनों की तरफ बंदूक लेकर मैं बढ़ नहीं सकता। मैं बस बोल सकता हूँ। मैं बहरों की तरह गूंगा, तुम्हारे कान पर है हाथ मगर फिर भी मैं बोलूंगा। हजारों साल की ये सभ्यता को गौर से देखो, सुनो आवाज तुम मन की, जरा गहराई से सोचो। तुम्हें क्या सच में लगता है कोई अपना पराया है, हुआ पैदा है जो इस देश में बाहर से आया है। सभी का खून है शामिल, लगी कुर्बानियां सबकी, कि हमने हड्डियों को जोड़कर भारत बनाया है। तुम्हें अगर इश्क है इससे तो इसको दिल से अपनाओ। कोई पूछे अगर मजहब तो हिंदुस्तान बतलाओ। धन्यवाद।

0: Amore mio, dove sai tu? Hey, क्या गा रही है?
1: अपने प्यार को याद कर रहा है और कह रहा है कि
0: ऐसे नहीं, गा के सुनाओ ना।
1: गा के?

0: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।
1: सुनिए और सुनाइए, रेडियो वितस्ता सुनना भूलना चाहिए। आपका रेडियो, आपकी अपनी आवाज, रेडियो वितस्ता 90.0 FM पर हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो वितस्ता, आपका अपना रेडियो, आपकी आवाज दिल से।
2: आप सुन रहे हैं अंबाला कैंट का पहला कम्युनिटी रेडियो FM 90.0 MHz पर, रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

0: रेडियो वितस्ता FM 90 की ओर से सभी विज्ञापन दाताओं के लिए खुशखबरी। किसी भी त्योहार या स्पेशल ओकेजन पर विज्ञापन या शुभकामना संदेश देने पर वितस्ता रेडियो की ओर से दिया जा रहा भारी डिस्काउंट। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कॉल करिए 7056413010 पर।
1: वाहेगुरु जी दा खालसा, वाहेगुरु जी दी फतेह। आप जी सुन रहे हो 90.0 FM ते रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा। आप दा अपना रेडियो, आप जी दी आवाज दिल तो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा।
2: आप सुन रहे हैं अंबाला कैंट का पहला कम्युनिटी रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

0: dalecz mchy. Ik he leto mangisker. Ik he radio mitista. हम सफर जिंदगी का
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज पर अब अलग केंद्र से हमारी ये प्रसारण सुनते रहिए

تویچو بوزان نمت اشاریہ صفر ریڈیو ودستا ہم سفر زندگی ہوں

सुनिए और सुनाइए, रेडियो विविधता सुनना भूल ना जाइए। आपका रेडियो आपकी अपनी आवाज, रेडियो विविधता 90.0 FM पर हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो विविधता, आपका अपना रेडियो आपकी आवाज दिल से।

आप सुन रहे हैं अंबाला कैंट का पहला कम्युनिटी रेडियो एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर, रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता, अंबाला का अपना रेडियो।

आपने ट्यून इन किया है FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग की ओर से सभी सामुदायिक रेडियो को कहा गया कि वो साइबर अपराध पर अपने श्रोताओं को जागरूक करें। ये कार्य हमने पहले भी किया है और आज हम एक बार आपको फिर कुछ जानकारी देना चाहते हैं। आजकल ऑनलाइन निवेश से जुड़ी धोखाधड़ी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया विज्ञापनों, व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप्स के जरिए गारंटीड रिटर्न का झूठा वादा करते हैं। कई बार ये लोग मशहूर हस्तियों या नेताओं के डीप फेक वीडियो भी दिखाते हैं। अगर कोई ऑनलाइन दोस्त या डेटिंग ऐप पर मिला व्यक्ति निवेश का ऑफर दे तो तुरंत सतर्क हो जाए। निवेश किसी भी तरह का हो सकता है, शेयर बाजार, क्रिप्टो या सोना। ठग आपसे फर्जी मोबाइल ऐप या वेबसाइट इस्तेमाल करवाते हैं, जहां पैसा बढ़ता हुआ सिर्फ दिखाई देता है, लेकिन असल में पैसा धोखेबाजों के पास चला जाता है। याद रखिए, ना कोई सेलिब्रिटी और ना ही सरकार कभी भी निवेश पर गारंटीड रिटर्न दे सकती है। आपको इस विषय पर सतर्क रहना होगा। जो भी हमें इस समय सुन रहे हैं, चाहे वो वृद्ध है चाहे वो युवा है, ये मैसेज सभी के लिए है। अगर युवा सुन रहे हैं तो इस बात को अपने दोस्तों, अपने परिवार में वृद्ध जनों को, सीनियर सिटीजन को या आपके आसपास जितने भी लोग हैं उन्हें भी सचेत करें। भारत सरकार का इनिशिएटिव यही है कि हम सब सतर्क रहें और हमारी मेहनत की कमाई किसी ठग के हाथ में ना चली जाए। अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं। हम आपको नंबर एक बार फिर बताते हैं। अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें। ये जानकारी आपको हम दे रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के सौजन्य से। होशियार रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।

0: एक ही ताजमहल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी।
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज पर अम्बाला कैंट से हमारे प्रसारण।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

सुनन खातर हरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन सेट कर दियो 90.0 ऑन योर फोन और मलै दियो 7056413010 पा फोन।

सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं सिंगर नीलम नारायण। मेरा एक बहुत प्यारा वीडियो सॉन्ग मीठे मीठे इश्क की रिलीज हो चुका है, जो आप रेडियो वितस्ता 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पे सुनने जा रहे हैं। अपना स्नेह जरूर दें। धन्यवाद।

0: आपने ट्यून इन किया है सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर, रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भारत सोपोरी। आज हम आपके साथ एक संवेदनशील विषय पर बात करना चाहेंगे जो हम सबके लिए ही बहुत ही जरूरी है। ये जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं हरियाणा के सभी सामुदायिक रेडियोस के माध्यम से, गांव वासियों के लिए, सरपंचों के लिए, सभी हरियाणा वासियों के लिए। आप अपनी जिम्मेदारी निभाइए और अपने आसपास के वातावरण को बचा के रखिए।
1: एक छोटी सी जिम्मेदारी सबको बचा।
0: हरियाणा में खुले पड़े बोरवेल एक गंभीर और जानलेवा समस्या बन चुकी है। आए दिन मासूम बच्चे खेलते खेलते इन गहरे गड्ढों में गिर जाते हैं, जिससे न केवल उस परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है बल्कि पूरे प्रशासनिक अमले की सांसें अटक जाती है। खेतों में बोरवेल को खुला छोड़ना एक प्रशासनिक लापरवाही ही नहीं है बल्कि एक गंभीर अपराध है। सुरक्षा सर्वोपरि। हरियाणा में खुले बोरवेल का खतरा और कानूनी परिणाम। खेतों में सिंचाई के लिए बोरवेल खोदना किसानों की जरूरत है, लेकिन काम पूरा होने के बाद या बोरवेल के असफल होने पर उसे खुला छोड़ देना साक्षात मौत को दावत देने जैसा है। हरियाणा के विभिन्न जिलों से ऐसे कई दर्दनाक घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जहां मासूमों को इन अंधेरे कुओं से निकालने के लिए सेना और NDRF को घंटों तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ता है। बोरवेल को बंद रखना क्यों जरूरी है, कुछ बिंदु आपके सामने रखता हूं। पहला, मासूमों की सुरक्षा। खुले बोरवेल सबसे बड़ा खतरा बच्चों और मवेशियों यानी पशुओं के लिए होते हैं। खेल कूद के दौरान या घास चरते समय इनमें गिरने का जोखिम हमेशा बना रहता है। दूसरा, मानवीय और आर्थिक नुकसान। एक हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन में लाखों रुपए और प्रशासनिक ऊर्जा खर्च होती है। सबसे बढ़कर कई बार घंटों की मशक्कत के बाद भी बच्चों की जान नहीं बचाई जा सकती है, जो कि एक कभी ना भरने वाला घाव है। तीसरा, सतर्कता ही बचाव है। बोरवेल का काम खत्म होते ही उससे लोहे के मजबूत ढक्कन यानी कैप से ढकना, चारों तरफ कंक्रीट से पक्का करना और कटीली तारों की फेंसिंग करना बेहद जरूरी है। कानूनी प्रावधान और सख्त दंड। माननीय सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देशों के बाद हरियाणा सरकार और पुलिस प्रशासन ने खुले बोरवेल छोड़ने वालों के खिलाफ कड़े रुख अपनाए हैं। अगर कोई अपने खेत या प्लॉट में बोरवेल खुला छोड़ता है तो उसके खिलाफ निम्नलिखित कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। भारतीय न्याय संहिता BNS की धाराएं, जो पहले IPS के नाम से हम जानते थे। पहला, लापरवाही से जान जोखिम में डालना। खुले बोरवेल के कारण किसी की जान को खतरा पैदा करने पर लापरवाही का मामला दर्ज होता है। दूसरा, गैर इरादतन हत्या का मामला। यदि खुले बोरवेल में गिरने से किसी बच्चे या व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो जमीन के मालिक और बोरवेल खोदने वाली एजेंसी के खिलाफ गैर इरादतन हत्या यानी कल्पेबल होमिसाइड के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता है। इसमें दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की जेल और भारी जुर्माना हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार बोरवेल खोदने से कम 15 दिन पहले जिला प्रशासन यानी DC या सरपंच को लिखित सूचना देना अनिवार्य है। नियम तोड़ने पर बोरवेल को तुरंत सील कर दिया जाता है। जमीन मालिक पर भारी प्रशासनिक जुर्माना लगाया जाता है। हादसे की स्थिति में रेस्क्यू ऑपरेशन यानी बचाव कार्य का पूरा खर्च भी दोषी जमीन मालिक से वसूला जा सकता है। अब हम बात करते हैं हमारे कर्तव्य की। एक छोटी सी लापरवाही एक जिंदगी का अंत कर सकती है। यदि आपके आसपास या खेत में कोई ऐसा बोरवेल है जो इस्तेमाल में नहीं है तो उसे तुरंत मिट्टी, मलबे या कंक्रीट से ऊपर तक भर दें। अगर कोई मकान या जमीन मालिक कहने पर भी बोरवेल बंद नहीं करता है तो इसकी सूचना तुरंत अपने गांव के सरपंच, स्थानीय पुलिस या जिला प्रशासन को दें। सजग रहें और किसी मासूम की जान बचाने में अपना योगदान दे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।

0: एक ही ताजमहल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अम्बाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता, अंबाला का अपना रेडियो।

अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

सुनन खातर हरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन सेट कर दियो 90.0 ऑन योर फोन और मले दियो 7056413010 पा फोन।

0: एक ही ताजमहल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अम्बाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता अंबाला का अपना रेडियो।

0: एक ही ताज महल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: ओ ढाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अम्बाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए।

पेश है कार्यक्रम सुनहरे पल एपिसोड 2। आज का एपिसोड पेश करेंगे आरजे किरणी। आज बात करेंगे सदाबहार गायक।

0: सभी श्रोताओं को मेरा यानी किरणी का नमस्कार। सुनहरे पल का एक और अंक लेकर हाजिर हूँ। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे एक महान वर्सटाइल गायक मोहम्मद रफी साहब के बारे में और सुनेंगे उनके गाए हुए गीत।
1: ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर के तुम नाराज ना।
0: मोहम्मद रफी का जन्म अमृतसर के पास कोटला सुल्तान में 24 दिसंबर 1924 को हुआ था। इसके बाद उनका परिवार 1932 में लाहौर चला गया। लाहौर में अपने होने वाले जीजा की मदद से रफी साहब मुंबई आए, जहां उन्होंने गायकी की ट्रेनिंग लेना शुरू कर दिया। रफी ने अपना पहला गाना श्याम सुंदर की फिल्म गाँव की गोरी के लिए गाया। इस गाने को उन्होंने जीएम दुरानी के साथ मिलकर गाया था। लोगों का मानना था कि मोहम्मद रफी की आवाज शमी कपूर पर सबसे ज्यादा फपती थी, लेकिन मोहम्मद रफी के पसंदीदा एक्टर शमी कपूर नहीं बल्कि राजेंद्र कुमार थे, जिनको टीवी पर देखते ही रफी मानो खो से जाते थे।

एक बार संजय गांधी किशोर कुमार से बेहद नाराज हो गए थे। उन्हें मनाने और किशोर कुमार को संजय गांधी के गुस्से से बचाने के लिए खुद मोहम्मद रफी ने खास तौर से संजय गांधी से मुलाकात की थी। रफी की गायकी के लिए मोहब्बत को इसी से समझा जा सकता है कि जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, तब उस समय उनकी पहली पत्नी ने भारत में रुकने से मना कर दिया था। ऐसे में रफी ने ये फैसला किया कि वो अपने पहले प्यार यानी सिंगिंग के खातिर मुंबई में ही रुकेंगे, जिसके बाद वो अपनी पहली पत्नी से अलग हो गई।

ये गाने तलत महमूद से गवाने वाले थे, लेकिन एक दिन उन्होंने तलत महमूद को सिगार पीते देख लिया। एक गायक सिगरेट पिए उन्हें ये पसंद नहीं था, सो उन्होंने रफी साहब को मौका दिया। बेजू बावरा के गीतों ने इतना तहलका मचाया कि मोहम्मद रफी रातों रात लोगों के चहेते गायक बन गए। रफी बहुत कम बोलने वाले, जरूरत से ज्यादा विनम्र और मीठे इंसान थे। शर्मीले इतने थे कि रफी साहब ने कभी कोई इंटरव्यू नहीं दिया। उनके सभी इंटरव्यू उनके बड़े भाई अब्दुल अमीन हैंडल करते थे। कहते हैं कि रफी ने अपनी पूरी लाइफ में सिर्फ दो इंटरव्यू दिए थे।

वैसे तो रफी साहब के प्रति लोगों में दीवानगी के कई किस्से मशहूर है, लेकिन ये किस्सा नौशाद साहब ने खुद सुनाया था। हुआ यूं कि एक बार एक अपराधी को फांसी दी जा रही थी, उससे उसकी अंतिम इच्छा पूछी गई तो उसने न तो अपने परिवार से मिलने की इच्छा जताई और न ही किसी खास खाने की फरमाइश की। उसने कहा कि वो मरने से पहले रफी का बेजू बावरा फिल्म का गाना ए दुनिया के रखवाले सुनना चाहता है। इस पर एक टेप रिकॉर्डर लाया गया और उसके लिए वो गाना बजाया गया। वैसे बता दे कि इस गाने के लिए मोहम्मद रफी ने 15 दिनों तक रियाज किया और रिकॉर्डिंग के बाद उनकी आवाज इस हद तक टूट गई थी कि कुछ लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि रफी शायद कभी अपनी आवाज वापस नहीं पा सकेंगे।

फिल्म नीलकमल के गाने बाबुल की दुआएं लेती जा के लिए रफी साहब को नेशनल अवार्ड मिला था। इस गीत को गाते समय कई बार उनकी आंखें नम हो गई थी और इसकी वजह ये थी कि इस गीत को रिकॉर्ड करने से एक दिन पहले ही उनकी बेटी की सगाई हुई थी और कुछ दिनों में शादी थी, इसलिए वो काफी भावुक थे। फिर भी उन्होंने ये गीत गाया और इस गीत के लिए उन्हें नेशनल अवार्ड मिला।

हिंदी सिनेमा को अनगिनत नगमे देने वाले महान गायक मोहम्मद रफी जब अपने करियर के शिखर पर थे तो सिर्फ मौलवियों के कहने पर फिल्मों में गाना बंद कर दिया था। दरअसल रफी हज करने गए थे और मौलवियों का कहना था कि हाजी होने के बाद गाना बजाना बंद कर देना चाहिए। रफी के मन में भी ये बात बैठ गई। हज से लौटकर कई महीने गुजर गए और रफी ने कोई गाना रिकॉर्ड नहीं किया। बाद में नौशाद साहब ने उन्हें बहुत समझाया और रफी के बेटू ने भी गाना शुरू करने की सलाह दी। तब जाकर उनका मन बदला और दोबारा गाना शुरू किया।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का। रफी साहब को पब्लिसिटी बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो जब भी किसी शादी में जाते थे तो ड्राइवर से कहते थे कि यहीं खड़े रहो। रफी सीधे कपल के पास जाकर उन्हें बधाई देते थे और फिर अपनी कार में आ जाते थे। वो जरा देर भी शादी में नहीं रुकते थे। मोहम्मद रफी बहुत ही शर्मीले स्वभाव के इंसान थे, न किसी से ज्यादा बातचीत और ना ही किसी से कोई लेना देना। न शराब पीते थे ना ही सिगरेट पीते थे। पार्टियों का शौक भी नहीं था, ना ही देर रात घर से बाहर रहने की आदत। संकोची तो इतने थे कि वो कभी भी संगीतकार से ये नहीं पूछते थे कि उन्हें गाने के लिए कितना पैसा मिलेगा। बस वे आकर गीत गा दिया करते थे और कभी कभी तो एक रुपया लेकर गीत गा दिया करते थे।

रफ़ी साहब न सिर्फ बहुत अच्छे गायक थे पर बेहद उम्दा इंसान भी थे, इसलिए ये कहना मुश्किल है कि वह इंसान बड़े थे या कलाकार। मोहम्मद रफ़ी ने अपनी जिंदगी में करीब 26,000 गीत गाए और लगभग हर भाषा में। वर्ष 1946 में फिल्म अनमोल गढ़ी में तेरा खिलौना टूटा से हिंदी सिनेमा की दुनिया में कदम रखा और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। चाहे किशोर प्रेम का अलहड़पन हो, दिल टूटने का दर्द हो, प्रेमिका से इजहार मोहब्बत हो या सिर्फ उसके हुस्न की तारीफ, मोहम्मद रफ़ी का कोई सानी नहीं था। मोहब्बत ही नहीं, इंसानी जज्बात के जितने भी पहलू हो सकते हैं, दुख, खुशी, आस्था या देशभक्ति या फिर गायकी का कोई भी रूप हो, भजन, कवाली, लोकगीत, शास्त्रीय संगीत या गजल, मोहम्मद रफ़ी ने गायकी में सभी भावनाओं को बखूबी निभाया। ये सच है कि मोहम्मद रफ़ी साहब जैसा फनकार न कभी हुआ है और न कभी होगा।

उत्तर भारत में कोई बारात नागिन डांस के बिना नहीं निकलती, लेकिन ये भी सच है कि बारात में आज मेरे यार की शादी है भी अनिवार्य रूप से गाया जाता है। आदमी सड़क का फिल्म का ये गीत रफी साहब ने गाया है। उनका एक और गीत जात पात और धर्म का भेद किए बिना बारातों में खूब गाया जाता है। ये गाना दोस्ती की तरफ से नए दुल्हे की शान में कसीदे पढ़ने के अंदाज से गाया जाता है। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। इस देशभक्ति के गीत का इस्तेमाल जिसने भी दुल्हे के लिए पहली बार किया था उसे 100 तोपों की सलामी। एक और किस्सा अमिताभ से सुनिए। 2 दिन का कार्यक्रम था। पहले दिन रफी साहब गा चुके थे। दूसरे दिन सुबह हमें पता चला कि आज जिन गायक का प्रोग्राम है वो नहीं आ रहे हैं। रफी साहब एयरपोर्ट जा चुके थे। हम लोगों ने एयरपोर्ट की ओर दौड़ लगाई। प्लेन उड़ने ही वाला था। एयरपोर्ट अथॉरिटी से निवेदन करके प्लेन में पहुंचे और रफी साहब को समस्या बताई। रफी साहब बिना कुछ कहे तत्काल हमारे साथ नीचे उतर आए। इस तरह हम परेशानी में फंसने से बच गए। बता दे, रफी साहब को अमिताभ की दीवार बहुत पसंद थी।

उन्होंने हर बड़े संगीतकार के साथ सुर मिलाए। अपने दौर के हर बड़े छोटे कलाकारों के लिए पर्दे के पीछे से आवाज दी। उनकी आवाज में वैरायटी थी, मधुरता थी ही, इसके अलावा उन्हें पार्श्व गायन की तकनीकी गहरी समझ थी। इसी के चलते वो कलाकारों की आवाज के हिसाब से अपनी आवाज को मॉड्यूलेट कर लेते थे। उनका गाना सुनने भर से ही पता चल जाता था कि पर्दे पर कौन कलाकार इसे साकार कर रहा है। हीरो की आवाज से आवाज मिलाने में उनका कोई सानी नहीं था। रफी साहब तीसरी मंजिल का गीत ओ हसीना जुल्फों वाली में ड्रम का कमाल है। हम किसी से कम नहीं, मैं चांद मेरा दिल, चांदनी हो तुम, मैं गिटार की रिदम है। रफी को वर्सटाइल सिंगर ऐसे ही नहीं कहा जाता। पद्मश्री से नवाजे गए मोहम्मद रफी को अनेक बार फिल्म फेयर अवार्ड मिले। उनके गानों की लिस्ट देना यहाँ संभव नहीं। उन्होंने 26,000 से ज्यादा गीत गाए हैं, सोलो भी और ड्यूट भी।

मोहम्मद रफी का निधन 31 जुलाई 1980 को हार्ट अटैक आने से हुआ था। मृत्यु से बस कुछ घंटे पहले ही रफी एक गाने की रिकॉर्डिंग करके आई थी। ये गाना था फिल्म आसपास का, शाम फिर क्यों उदास है दोस्त, तू कहीं आसपास है दोस्त। मोहम्मद रफी का निधन रमजान के महीने में हुआ था। जिस दिन उनकी अंतिम विदाई थी उस दिन मुंबई में जोरों की बारिश हो रही थी, फिर भी अंतिम यात्रा में हजारों लोग सड़कों पर थे और सबने नम आंखों से अपने इस पसंदीदा गायक को विदाई दी। रफी साहब के निधन पर भारत सरकार द्वारा 2 दिन का राष्ट्रीय शोक रखा गया था। उनके निधन के बाद संगीतकार नौशाद ने कहा था, कहता है कोई दिल गया, दिल भर चला गया, साहिल पुकारता है समंदर चला गया, लेकिन जो बात सच है वो कहता नहीं कोई, दुनिया से मौसीकी का पैगंबर।

बेताज बादशाह मोहम्मद रफी के बारे में जितना कहा जाए, जितना बोला जाए, उतना ही कम है। उनकी आवाज उनके गानों की तरह ही अमर हो गई। इसके साथ ही आज का ये कार्यक्रम यही समाप्त होता है। दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार। और जाने से पहले मोहम्मद रफी की गाई हुई दो लाइनें मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे, जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग संग तुम भी गुनगुनाओगे, हाँ तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुनहरे पल एपिसोड 2। आज का कार्यक्रम आधारित था सदाबहार गायक मोहम्मद रफी साहब पर। प्रस्तुत किया आरजे किरली ने। रिकॉर्ड एडिट व निर्देशन भारत सोपोरी। ये थी FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता की पेशकश।

तू कहीं और है, तेरा जिक्र मेरे साथ रहे। मैंने तकिए पे तेरा नाम लिख

उस गांव की गलियों से जब जब तू गुजरा होगा, चांद भी आसमां से तुम्हें देखने को उतरा होगा। बेताब धड़कनों ने छिप छिप के हर नजर से दिलो जहां जिगर को तेरे नाम कर दिया होगा। बेताब धड़कनों ने छिप छिप के हर नजर से दिलो जहां जिगर को तेरे नाम कर दिया होगा।

बहार गजल आप सुन रहे हैं रमेश मराठा के साथ। फिर ओढ़ लिया आंचल हमने अपने आंसू का, बज़्म तन्हाई में छेड़ा जब तेरी यादों ने। फिर ओढ़ लिया आंचल हमने अपने आंसू का, बज़्म तन्हाई में छेड़ा जब तेरी यादों ने।

समीन बहारे गजल आप सुन रहे थे रमेश मराठा के साथ। दीजिए इजाजत, शुक्रिया, नवाजिश।

आप सुन रहे थे रेडियो विदस्ता 90.0 मेगाहर्ट्ज पर। आज के हमारे प्रसारण अब यहीं समाप्त होते हैं। हम आपकी सेवा में सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक रहते हैं। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त और होस्ट कृष्णा। चाहूंगी आपसे आज्ञा, मिलते हैं कल सुबह 5:58 पर नई ऊर्जा नई उमंग के साथ। आप खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। शुभ रात्रि, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।